पावा तौ तत्त है तत् मिलया सच पावा तथा अथा था नहीं पावा ओ अथा एहो थिर न रहावा थोड़ा थल थानक आरंभ बिनही था बह मंदर थम्ब दद्दा देख जो बिन सुनहारा जास अदेश तस राख बिचारा दसवें द्वार कुंची जब दी जय तव दयाल को दर्शन की जय तद्दा अर्ध है उर्द नवेरा अर्ध है उर्द है मंज बसेरा अर्ध है शाड़ उर्द जव आवा तव अर्ध है उर्द मिलया सुख पावा नन्ना निस दिन निरखत जाय निरखत नैन रहे रतवाय निरखत निरखत जब जाय पावा तबले निरख है निरख मिलावा पप्पा अपार पार नहीं पावा परम ज्योत सो पर चोलावा पांचो इंद्री ने ग्रह करी पाप पुन दो निर्वरई फफा फफा बिन फूले फल होई ता फल फंक लख जो कोई दूण न परे फंक बिचार है ता फल फंक सबै तन फार है बब्बह बिंद है बिंद मिलावा बिंद है बिंद न बिछरन पावा बंदो होए बंदगी गह बंदक होए बद बंद सुध लह बंदक होए बंद सुध लह पब्बा भेद है भेद मिलावा अब पौ भान भरो सो आवा जो बाहर सो भीतर जाने आ भया भेद भूपत पहचाने आ ममा मूल गहया मन मन मरमी होए सो मन को जाने मत कोई मन मिलता बिलमावे मगन मय भया ते सो सच पावे ममा मन स्यों काज है मन सा दे सिद होए मन ही मन स्यों कह कबीरा मन सा मिलया ना कोए एहो मन शक्ति एहो मन सियो एह मन पंच तत् को जियो एहो मन ले जाओ उन मन रह ताओ तीन लोक की बात कह यया जाओ जाने ताओ दुर्मत हान कर बस काया गाओ रण रुतो पाजे नहीं सूरह थारो नाओ रारा रस निरस कर जाने होए निरस सो रस पहचान्या एह रस छाडे ओह रस आवा ओह रस पिया एह रस नहीं पावा लल्ला ऐसे लिव मन लावे अनत न जाए परम सच पावे अर जो तहा प्रेम लिव लावे ताओ अलह लह लह चरण समावे वावा बार बार बिसन समार न आवे हार बल बल जे बिसन तना जस गावे बिसन मिले सब ही सच पावे वावा वाही जानी है वाह जाने एह होए एह वर ओह जब मिले तब मिलत न जाने कोए सस्सा सो नीका कर सोद हो घट परचा की बात निरोध हो घट परचै जो उपजै भाओ पूर रहा तह त्रिभवन राओ खखा खोज परै जो कोई जो खोजै सो बहुर न होई खोज बूझ जो करै बिचारा तो भव जल तरत न लावै बारा सस्सा सो सह सेज सवार सोई सही संदेह निवार अल्प सुख शाड परम सुख पावा तब हे त्रिय ओह कंत कहावा हा हा होत होए नहीं जाना जब ही होए तब है मन माना है तौ सही लख है जो कोई तब ओही ओह एहो न होई ल्यो ल्यो करत फिरे सब लोग ता कारण व्यापै बहु सोग लक्ष्मी बर स्यो जाओ ल्यो लावे सोग मिटे सब ही सुख पावे खखा किरत खपत गए केते किरत खपत अजहू नह चेते जब जाग जब जा अब जाग जान जो मना रह जह का बिछरात है थिर लह बावन अखर जो रे आन सकिया ना अखर एक पछान सत का शब्द कबीरा कह पंडित हुए सो अन पैर है पंडित लोग कौ व्यवहार ज्ञानवंत को तत् विचार जाके जीत जैसी बुद्ध होई कह कबीर जाने गा सोई एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी थिति कबीर जी की श्लोक पंद्रह तिथि सात वार कह कबीर उर वार न पार साधक सिद्ध लख जो पेओ आपे करता आपे देओ तिथि अम्मा वसमह आस निवार हो अंतर जामी राम समारो जीवित पाव हो मुख द्वार अनुपो शब्द तत् निज सार चरण कमल गोबिंद रंग लागा संत प्रसाद पए मन निर्मल हर कीर्तन मह अंदिन जागा रहाओ परिवा प्रीतम करो विचार घट मह खेलिया घट अपार काल कल्पना कदे न खाए आद पुरख मह रह समाए द्वितीया दो कर जाने अंग माया ब्राह्मण में सब संग ना हो बटे न कटता जाय कुल निरंजन एक पाए तृतीया तीने सम कर लियावे आनंद मूल परम पद पावे साध संगत उपजै विश्वास बाहर भीतर सदा विप्रगास चौथे चंचल मन को गह हो काम क्रोध संग कबहु ना बह हो जाल थाल माहे आप है आप आपे जप हो आप ना जाप पांच पांच पांच पंच तत् विस्तार कनक कामनी जुग व्यवहार प्रेम सुधा रस पीवे कोय जरा मरण दुख फेर ना होए छाट
ਛੱਠ ਖੱਟ ਚੱਕਰ ਚਹੂੰ ਦਿਸਤਾ ਆਏ, ਬਿਨ ਪਰਚੈ ਨਹੀਂ ਥਿਰਾ ਰਹਾਏ। ਦੁਬਦਾ ਮੇਟ ਖਮਾ ਗਹਿ ਰਹੋ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀ ਸੂਲ ਨਾ ਸਹੋ। ਸਾਤੇ ਸਤ ਕਰਬਾਚਾ ਜਾਣ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਲਿਹੋ ਪਰਵਾਣ। ਛੂਟੈ ਸੰਸਾ ਮਿਟ ਜਾਏ ਦੁੱਖ, ਸੁਨ ਸਰੋਵਰ ਪਾਵੋ ਸੁਖ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ, ਤਾਮਹਿ ਕੁੱਲ ਮਹਾ ਨਿਦਰਾਇਆ। ਗੁਰ ਗਮ ਗਿਆਨ ਬਤਾਵੈ ਭੇਦ, ਉਲਟਾ ਰਹੇ ਭੰਗ ਅਛੇਦ। ਨੌਵੀਂ ਨਵੇਂ ਦੁਆਰ ਕੋ ਸਾਧ, ਬਹਿਤੀ ਮਨਸਾ ਰਾਖੋ ਬਾਂਧ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਸਭ ਬਿਸਰ ਜਾਹੋ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵ ਹੋ ਅਮਰ ਫਲ ਪਖਾਹੋ। ਦਸਵੀਂ ਦਹਿ ਦਿਸ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਛੂਟੈ ਭਰਮ ਮਿਲੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਤਤ ਅਨੂਪ, ਅਮਲ ਨਾ ਮਲ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਧੂਪ। ਏਕਾਦਸੀ ਏਕ ਦਿਸ ਧਾਵੈ, ਤੋ ਜੋਨੀ ਸੰਕਟ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵੈ। ਸੀਤਲ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਸਰੀਰਾ, ਦੂਰ ਬਤਾਵਤ ਪਾਇਆ ਨੀਰਾ। ਬਾਰਸ ਬਾਰਹਿ ਉਗਵੈ ਸੂਰ, ਅਹਿਨਸ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ। ਦੇਖਿਆ ਤਿਹੂੰ ਲੋਕ ਕਾ ਪੀਓ, ਅਚਰਜ ਭਇਆ ਜੀਵ ਤੇ ਸੀਓ। ਤੇਰਸ ਤੇਰਹਿ ਅਗਮ ਬਖਾਣ, ਅਰਧ ਉਰਦ ਵਿੱਚ ਸਮ ਪਹਿਚਾਣ। ਨੀਚ ਊਚ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਅਮਾਨ, ਵਿਆਪਕ ਰਾਮ ਸਗਲ ਸਾਮਾਨ। ਚੌਦਸ ਚੌਦਹਿ ਲੋਕ ਮਝਾਰ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਮਹਿ ਬਸੈ ਮੁਰਾਰ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰੋ ਧਿਆਨ, ਕਥਨੀ ਕਥੀਐ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਪੂਨਿਉ ਪੂਰਾ ਚੰਦ ਅਕਾਸ, ਪਸਰਹਿ ਕਲਾ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਆਦ ਅੰਤ ਮਦ ਹੋਏ ਰਹਿਆ ਥੀਰ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਹਿ ਰਮੇ ਕਬੀਰ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਵਾਰ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ ਸਤ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਗੁਰ ਗਮ ਭੇਦ ਸੋ ਹਰ ਕਾ ਪਾਵੋ। ਰਹਾਓ ਆਦਿਤ ਕਰੈ ਅਗਤ ਆਰੰਭ, ਕਾਇਆ ਮੰਦਰ ਮਨਸਾ ਥੰਬ। ਅਹਿਨਸ ਅਖੰਡ ਸੁਰਹੀ ਜਾਏ, ਤਉ ਅਨਹਦ ਵੇਣ ਸਹਿਜ ਮਹਿ ਬਾਏ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਰੈ, ਚਾਖਤ ਬੇਗ ਸਗਲ ਬਿਖ ਹਰੈ।

बुद्ध वार बुद्ध करे प्रगास, हृदय कमल में हर का बास। गुर मिल दो एक समतरे, उर्द पंक लै सूदा करे। बृहस्पत बिख्या देव हाय, तीन देव एक संगलाय। तीन नदी तह त्रिकुटी माहे, अहंस कल कसमल तो वह नाहे। सो कृत सहारे सो एह व्रत चढ़े, अनदिन आप आप स्यो लड़े। सुरखी पांचों राखे सबै, तौ दूजी दृष्ट न पीसै कबै। थावर थिर कर राखे सोए, जूत की वट्टी कट मह जोए। बाहर भीतर पया भया प्रगास, तब हुआ सगल कर्म का नास। जब लग कट मह दूजी।

मोस को ना कह समझाए जात है आवागमन बलाय रहा बोह वेद धर्म निरूपी है करता दिस सब लोए कवन कर्म ते छूटी है जे साधे सब सिद्ध होए कर्म अकर्म विचारी है संका सुन वेद पुराण संसा सद हृदय बसै कौन हिरै अभिमान बाहर उदक पखारी है घट पीतर बिद बेकार शुद्ध कवन पर होए बो सुच कुंजर बिद व्यवहार राव प्रगास रजनी जथा गत जानत सब संसार पारस मानो तांबो छुए कनक होत नहीं बार परम परस गुर पेटी है पूर्व लिखत ललाट उन मन मन मन ही मिले छुटकत बजर कपाट भगत जुगत मत सत करी भ्रम बंधन काट बेकार सोई बस रस मन मिले गुण निर्गुण एक विचार अनेक जतन निग्रह किए टारी ना टरै भ्रम फास प्रेम

अपेक्षा आपे नदर करे, जो किश करना सो कर रहा, अवर न करना जाई, जैसा वरतह तै सो कही, सब तेरी बड़ियाई। काल कल वाली माया मद मीठा, मन मत वाला पीवत रह, आपे रूप करे बहु भांति, नानक बपड़ा एव कह, आसा महला पहला, वाजा मत पखाव जपाओ, होए आनंद सदा मन चाओ, एहा भगत एहो तपताओ, एहो रंग नाचहो रख रख पाओ, इत रंग नाचहो रख रख पाओ, पूरे ताल जाने सालाह, होर नचना खुशियां मन माह रहाओ, सत संतोख वजह दुए ताल, पैरी वाजा सदा निहाल, राग नाद नहीं दूजा पाओ, इत रंग नाचहो रख रख पाओ, भाव फेरी होए मन चीत, पाओ फेरी हो वै मन चीत, बहद्या उड़द्या नीता नीत, लेटन लेट जाने तन स्वाहो, इत रंग नाचो रख रख पाओ, सिख सभा दीख्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ, नानक आखण वेरा वेर, इत रंग नाचो रख रख पैर, आसा महला पहला, पौन पाए धरी सब धरती, जल अग्नि का बंद किया, अंधले दह सिर मूंड कटाया, रावण मार क्या वड्डा भया, क्या उपमा तेरी आखी जाए, तू सर्बह पूर रहा लिवलाए रहाओ, जियो पाए जुगत हथ कीनी, काली नाथ क्या वड्डा भया, किस तू पुरख जोरू कौन कहिया, सर्व निरंतर रव रहया, नाल कुटम साथ वरदाता, ब्रह्मा भालन सृष्ट गया, आगे अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या वड्डा पया, रतन उपाए धरे खिर मथया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया, सम हल्ला पहला, कर्म करतूत बेल बिस्तारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप न रेख अनाहद वाजै, शब्द निरंजन किया, करे वखियान जाने जे कोई, अमृत पी वै सोई रहाओ, जिन पिया से मस्त पए है, टूटे बंधन फाए, ज्योति ज्योत समाणी पीतरता, छोडे माया के लाहे, सर्व ज्योत रूप तेरा देखिया, सगल भवन तेरी माया, रारे रूप निरालम बैठा, अंदर के विच छाया, बीणा शब्द बजावे जोगी, दर्शन रूप अपारा, शब्द अनाद सो सौ राता, नानक कहे विचारा, आसा महला पहला, मैं गुण गल्ला के सिर पार, गली गल्ला सिर जनहार, खाना पीना हसना बाद, जब लग हृदय न आवह याद, तव परवाह के ही क्या कीजै, जन्म जन्म किश ली जी लीजै, रहाओ मन की मत मता गल मता, जो किश बोली है सब खतो खता, क्या मोह लै की चै अरदास, पाप पुन दोए साखी पास, जैसा तू कर है तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नाही कोए, जे ही तू मत दे ते ही को पावै, तुदे आपे भावै तिवै चलावै, राग रतन भरिया परवार, तिस विच उपजै अमृत सार, नानक करते का एहो तन माल, जे को बूझै एहो विचार, आसा महला पहला, कर किरपा अपने कर आया, ता मिल सखिया काज रचाया, खेल देख मन आनंद भया, सहवी आहन आया, गावहो गावहो कामणी विवेक विचार, हमरे कर आया जग जीवन पतार रहाओ, गुरु द्वारे हमरा भी आहो जे होआ, जा सह मिलिया ता जानिया, तेहो लोका में शब्द रविया है, आप गया मन मानिया, अपना कार्ज आप सवारे, होरन कार्ज ना होई, जित कार्ज सत संतोख दया धर्म है, गुरमुख बूझै कोई, भनत नानक सब नाका फिर एको सोए, जिसनु नदर करे सा सुहागण होए, आसा महला पहला, ग्रहो मान सम सर सहज सुभाए, दुर्मत गत भई कीरत ठाए, सच पौड़ी सचो मुख नाओ, सतगुर से पाए निज थाओ, मन चूरे खड़ दर्शन जान, जोत सर्ब जोत पूर्ण भगवान रहाओ, अधिक त्यास पेक बहु करे, दुख बेख्या सुख तन पर हरै, काम क्रोध अंतर तन हरै, दुबदा छोड़ नाम निस्तर, सिफत सलाहन सहजैना।

आवो संत प्रताप साध कै संगे हर हर नाम ते आवो रे रहाओ सगल समग्री जा कै सूत परोय घटघटे अंतर रव्या सोई ओपत परलो खिर मह करता आप अलेपा निर्गुण रहता करन करावने अंतर जामी आनंद करे नानका स्वामी आसा महला पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे दुलाभ देहे जेती नहीं हारे केल बिख बिनासे दुख दर्द दूर भये पुनीत संतन की धूर रहाउ प्रभ के संत उदाहरण जोग तिस भेटे जिस तुर संजोग मन आनंद मंत्र गुरदिया त्रिसन भुजी मन निश्चल थिया नाम पदार्थ नौ निध सिद्ध नानक गुरते पाई बुद्ध आसा महला पंजवा मिटी इतिहास ज्ञान अंधेरे सा सेवा का आग कटे घनेरे सुख सहज आनंद घना गुर सेवा ते भय मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाओ बिनस्यो मन का मूर्ख ढीठा प्रभु का भाणा लागा मीठा गुर पूरे के चरण गहे कोट जन्म के पाप लहे रतन जन्म एहो सफल भया कहो नानक प्रभ करी मया सा महला पंजवा सतगुरे अपना सद सदा संहारे गुर के चरण के संग चारे जाग रे मन जागन हारे बिन हर भगत अवर ना आवस कामा बिन हर अवर ना आवस कामा झूठा मोह मिथ्या पसारे रहाओ गुर की बाणी स्यो रंग लाए गुर कृपाल होए दुख जाए गुर बिन दूजा नाही थाओ गुरदाता गुरदेवै नाओ गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप आठ पैर नानक गुर जाप आसा महला पंजवा आपे पेड बिस्तारी साख अपनी खेती ही आपे राख जात कद पेखो एकै उही घटघटे अंतर आपे सोई रहाओ आपे सूर किरण बिस्तार सोई गुप्त सोई आकार सरगुण निर्गुण थापै नाओ दोह मिल एक है कीनो ठाओ कहो नान गुर भ्रम पौ खोया आनंद रूप साब नैन अलोया आसा महला पंजवा उकत सियानप किशु ना जाना दिन रहन तेरा नाम बखाना मैं निर्गुण गुण नाही कोय करन करावन हार प्रभ सोए रहाओ मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आस मन धारी जाप ताप संजम कर्म ना साधा नाम प्रभु का मने अराधा किशु ना जाना मत मेरी थोरी बिनवत नानक ओट प्रभ तोरी आसा महला पंजवा हर हर अखर दोए ए माला जपत जपत भय दीन दयाला करो बेनती सतगुरे अपनी कर कृपा राखो प्रभु सरनाई मोकाओ देहो हरे हर जपनी रहाओ हर माला उर अंतर धार है जन्म मरण का दुख निवार है हृदय संभाल मुख हर हर बोल सो जन इत उत कत है ना डोल कहो नानक जो राचे नाए ए हर माला ताख संग जाए आसा महला पंजवा जिसका सब किश तिस का होए तिस जन लेप देप न व्यापै कोय हर का सेवक सत ही सद ही मुक्ता जो किश करे सोई पाल जन कै अत निर्मल दास की जुगता रहाओ सगल त्याग हर सरणी आया तिस जन कहा व्यापै माया नाम निधान जाके मन माए तिस तिस

जहर नाम खेत जमाया, कर जोग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया, जन नानक गुरपूरा पाया, मन हृदय नाम लिखाए जियो, कल जुग हर किया पग त्रै खिसकिया पग, चौथा टिका टिकाए जियो। आसा महला चौथा, हर कीर्तमन भाई परमगत पाई, हर मंत्र मीठ लगान जियो, हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया, तुरमस्तक भाग पुराण जियो, तुरमस्तक भागा हर नाम सुहागा, हर नामे हर गुण गाया, मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी, हर नामे हर सुहाया, ज्योति ज्योत मिली प्रपाया, मिले सतगुरु मनुआ मान जियो। हर कीर्तमन भाई परमगत पाई, हर मंत्र मीठ लगान जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया, ते उत्तम पद उत्तम जन प्रदान जियो, तेना हम चरण सरेवें, खेन खेन पग धोवें, जिन हर मीठ लगान जियो। हर मीठा लाया परम सुख पाया, मुग पगा रती चारे, गुरमत हर गाया हर हर उर पाया, हर नमा कंठ तारे, सब एक दृष्ट समझ कर देखे, सब आत्म राम पछान जियो। हर हर जस गाया परम पद पाया, ते उत्तम जन प्रधान जियो, सत संगत मन भाई, हर रसन रसाई, विच संगत हर रस होए जियो। हर हर आराध्या गुर शब्द विगासिया, बीजा अवरना कोए जियो, अवरना कोए हर अमृत सोए, जिन पिया सो बिद जाने, तन तन गुरु प्रभ, तन तन गुरु पूरा प्रभ पाया, लग संगत नाम पछाण, नमो सेव नमो आराधा, बिन नाम अवरना कोए जियो। सत संगत मन पाई, हर रसन रसाई, विच संगत हर प्रभ हर रस होए जियो। हर दया प्रभ तारो, पाखण हम तारो, कड ले वो शब्द सुपाए जियो। मोह चिकड़ फाथे, निगरत हम जाते, हर बहा प्रभु पकराए जियो। प्रभ बहा पकराई, उत्तम मत पाई, गुरचरणी जन लागा, हर हर नाम जपिया, राध्या मुख मस्तक भाग सुभागा, जन नानक हर कृपा तारी, मन हर हर मीठा लाए जियो। हर दया प्रभ तारो, पाखण हम तारो, कड ले वो शब्द सुपाए जियो। आसा महला चौथा, मन नाम जपना, हर हर मन भाना, हर भगत जना मन चौ जियो, जो जान मर जीवे, तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो। मन हर हर पाओ, गुर करे पसाओ, जीवन मुक्त सुख होई, जीवन मरण हर नाम सुहेले, मन हर हर हृदय सोई, मन हर हर वस्या, गुरमत हर रसिया, हर हर रास गटाक पियाओ जियो। मन नाम जपना, हर हर मन भाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जग मरण ना पाया, नेताप लोका मत जंप कर ले जाए जियो, हर अंतर बहर हर प्रभे कोई हो जी उड़ा रखे ना जाए जियो, क्यों जियो रखी जय हर वस्तु लुड़ी जय, जिसकी वस्त सो ले जाए जियो, मनमुख करण पलाव कर परमे सब औखद दारू लाए जियो, जिसकी वस्त प्रभ ले स्वामी जन उपरे शब्द कमाए जियो, जग मरण ना पाए नेताप लुकाया मत जंप कर ले जाए जियो, तुर मरण लिखाया गुरमुख सोहाया जन उबरे, हर हर ध्यान जियो, हर सोभा पाई हर नाम वड़े आई, हर दरगाह पेंदे जान जियो, हर हर पेंदे हर नाम मैं सीधे, हर नाम मैं ते सुख पाया, जन्म मरण दोवें दुख मेटे, हर नाम मैं नाम समाया, हर जान प्रभ राल एक होए, हर जान प्रभ एक समान जियो, तुर मरण लिखाया गुरमुख सोहाया जन उबरे, हर हर ध्यान जियो, जग उपजे बिन स बिना स, लग गुरमुख अस्त्र होए जियो, गुर मंत्र दृढ़ाए, हर रस करसाए, हर अमृत हर मुख चोए जियो, हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया, फिर बहुड़ मरण ना होई, हर हर नाम अमर पद पाया, हर नाम समावे सोई, जन नानक नाम आधार टेक है, बिन नावे वरना कोए जियो, जग उपजे बिन सह बिन स बिना स, लग गुरमुख अस्त्र होए जियो। आसा महला चौथा, छंत वड्डा मेरा गोविंद, आगम गोचर आद निरंजन निरंकार जियो, तां की गत कही न जाई, अमित वड्याई मेरा गोविंद ला खपार जियो, गोविंद ला खपार परंपरा पपना जाने, क्या है जंत विचारे कही है जो तो दया खबखान, जिसनों नदर करे तू अपनी सो गुरमुख करे विचार जियो, वड्डा मेरा गोविंद गमोचर आद निरंजन निरंकार जियो, तू आद पुरख परंपर करता तेरा पार ना पाया जाए जियो, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर सब मैं रहा समाय जियो, घट अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर का अंत ना पाया, तिस रूप ना रेख अदेष्ट गोचर गुरमुख लख लखाया, सदा आनंद रह दिन राती सह जे

ठाकुर सरणी बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना आप नाम जपाया साध संगत आप हुआ आप जगत तराया राख लिए रखन हार सदा निर्मल करनी नानक नरक न जाहे कबहू हर संत हर की सरणी आसा महला पंजवा वन मेरे आलसा हर पास बेनंती राव सोह अपनड़ा प्रभ संग सुहंती संगे सुहंती कंत स्वामी दिन सरैनी राविया सास सास चितार जीवा प्रपेख हर गुण गाविया बिरहल जाया दर्श पाया अम्यो दृष्ट सिंह चंती बिनवंत नारक मेरी इच्छ पुनी मिले जिस खोजंती नस वन्यो किल विखो करता कर आया दूत हो दूत है दहन भया गोविंद प्रगटाया प्रगटे गोपाल गोविंद लालन साध संग बखाणिया आचरज डीठा अमे बूठा गुरप्रसादी जाणिया मन सांत आई वजी वधाई नह अंत जाई पाया बिनवंत नानक सुख सहज मेला प्रभु आप बनाया नरक ना डीठड़िया सिमरत नारायण जय जय धर्म करे दूत भय पलायन धर्म धीरज सह सुखिए साध संगत हर भजे कर अनुग्रह राख लीने मोह ममता सब तजे गह कंठ लाए गुर मिलाए गोविंद जब तक गायन बिनवंत नानक सिमर स्वामी सगल आस पुजायन निद सिद चरण गहे ताके हा काड़ा सब किश वस जिसै सो प्रभु असाड़ा गह पुजा लीने नाम दीने कर धार मस्तक राखिया संसार सागर नह व्यापै अम्यो हर रस चाखिया साध संगे नाम रंगे राण जीत वड्डा अखाड़ा बिनवंत नानक सरण स्वामी बहुड़ जमना पाड़ा असा महला पंजवा दिन रात कमायड़ो सो आयो माथै जिस पास लुकाए दड़ो सो विखी साथै संग देखै करण हारा काए पाप कमाईया सुकृत कीजा नाम लीजा नरक मूल ना जाइया आठ पहर हर नाम सिमर हो चलै तेरा साथे भज साध संगत सदा नानक मिट है दोह कमाते वल वंच कर उदर प्रह मूर्ख गावारा सब किस दे रहे हर देवन हारा दा तार सदा दयाल स्वामी काहे मन मुसारिया मिल साध संगे भजन संगे कुल समूहा तारिया सिद्ध साधक देव मन जन भगत नाम अधारा बिनवंत नानक सदा भजिया प्रभ एक करण हारा खोट ना कीचई प्रभ परखण हारा कूड़ कट कूड़ कपट कमाव दड़े जन्म है संसारा संसार सागर तिनी तरिया जिनी एक त्याया तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरणाई आया जल थल महियल रविया स्वामी ऊच अगम पारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल अधारा पेख हर चंदौरड़ी अस्थिर किश नाही माया रंग जीते से संग न जाही हर संग साथी सदा तेरा दिन सरण संभालिया हर एक बिन कछ अवर नाही भाव दुतिया जालिया मीत जोबन माल सरबस प्रभ एक कर मन माही बिनवंत नानक वड भाग पाईया सूख सहज समाही आसा महला पंजवा शंत कर अठवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कमला प्रम पीत कमला प्रम प्रीत हे तीखण मत विपरीत हे अवध अकारथ जात गहबर बन कोर हे ग्रह मूसत मन चोर हे दिन करो अन दिन खात दिन खात जात बिहात प्रभ बिन मिलहो प्रभ करुणापते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते कुल रूप धूप ज्ञानहीनी तुझ बिना मोहे कवन मात कर जोड़ नानक शरण आयो प्रिय नाथ नरहर करो गात मीना जलहीन हे ओह बिशरत मन तनखीन हे कत जीवन प्रिय बिन होत सनमुख सहबान हे मृग अर्पे मन तन प्राण हे ओह बेद्यो सहज स्रोत प्रिय प्रीत लागी मिल बैरागी खिन रहन त्रिग तन तिस बिना पलका ना लागै प्रिय प्रेम पागै चितवंत अंदन प्रमना श्री रंग राते नाम माते पै परम दुतिया सगल खोत कर माया दया दयाल पूर्ण हर प्रेम नानक मगन होत अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंदावत आप चात्रिक चित प्यास हे कन बूंद विचित्र मन आस हे अल पीवत बिन सताप तापा बिनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत कना सुंदर स चतुर सुजान स्वामी कवन रसना गुण पना गह पूजा लेवहो नाम देवो दृष्ट तारत मिटत पाप नानक जंपै पतत पावन हर दर्श पेखत नह संताप चितवो चित नाथ चितवो चित नाथ हे रख लेवो शरण अनाथ हे मिल चाओ चाई ले प्राण सुंदर तन ध्यान हे मन लुब्ध गोपाल ज्ञान हे जाचक जन राखत मान मान प्रभ मान पूर्ण दुख बदीरन सगल इच भुजंतिया हर कंठ लागे दिन सुभागे मिल नाह से सोहंतिया प्रभ दृष्ट तारी मिले मुरारी।

मैं और जो सर्व संसारा पूर्ण भगत पर स्वामी का सर्वतोक दे न्यारा नंदो नाही का बाता है कसम का किया जा को कृपा करी प्रभ मेरा मिल सात संगत नाउ लिया पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सबना करत उधारा कहो नानक गुरु बिन नहीं तरिया है पूर्ण तत् विचारा सुरठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज विचारे राम नाम तत् सारा किलवे काटे निमुख अराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीवो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावे साधु अमृत बाणी रहाओ मुक्त भुक्त जुगत सच पाइये सर्व सुखा का दाता अपने दास कहो भगत दान देवे पूर्ण पुरख विधाता श्रवणी सुनिया रसना गाइय।

तुम सुखदाई पुरख विधाते तुम राखो अपने बाला तुम निधाना टल सुल्तान जी ए जन सब जाचा कहो नानक हम है हवाला राख संतन कै पाचा सुरठ महला पंजवा कर दूजा मात गर्व मैं आपन सिमरन दे।

संतन की शरणा, संत हमारी और सताणी, संत हमारा गहना, हम संतन से बन आई, पूर्व लिखिया पाई, हे मन तेरा पाई रहाओ, संतन से मेरे लेवा देवी, संतन से व्यवहारा, संतन से हम लाहा खाटिया, हर भगत परे पंडारा, संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा, तो धर्म राय अब कहाँ करे गो, जो फाट्यो सगलो लेखा, महा आनंद पहे सुख पाया, संतन कह प्रसाद देखो नानक, हर से मन मान्या, रंग रत्ते बिस्मत।

प्यारे तू मेरो सुखदाता गुरपुरै दिया उपदेशा तुम ही संग पराता रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अभिमाना ता मैं सुख नहीं पाई है। हो रेण तू सगल की मेरे मानता अनंत मंगल सुख पाई है।

संत हो काट काट रहा समाहे हो पूर्ण पूर रहे हो श्रम है जल थल रमैया आहे रहा हो गुण दान नानक जस गावे सतगुरु परम चुकाए हो सर्व निवासी सदा ले।

हो वह मन शीतल अग्न न अंतर दुखी गुरु नानक को प्रभु देखाया जल थल त्रिपवन रुखी सुरठ महला पंजवा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इन ते आप छुडावो ए पितर ते इनको डारो अपन निकट बुलावो अपनी बिद आप जनावो हर जन मंगल गावो रहाओ बिसुर नाही कबहु हिए ते एह बिद मन मह पावो गुर पूरा पेट्यो वड भागी जन नानक कतह न तावो सुरठ महला पंजवा।

साध मेहरवान बंध पाया मेरा सतगुरु पूरा होई सर्व कल्याण रहाओ जियो पाए पिंड जिन साजे आदता पहनन खान अपने दास की आप पैज राखी नानक सतगुरु बाण सुरत महला पंजवां दुर्त गवाया हर प्रभ आपे सब संसार उबारे आप पार ब्रह्म प्रभ कृपा तहारी अपना बिरद सम्हारिया होई राजे राम की रखवाली सुख सहज आनंद गुण गाहो मन तन दे सुखाली रहाओ पतत उदाहरण सतगुरु मेरा मोहित उसका प्रवासा बख्श ले सब सच्चा साहेब सुनो नानक की अरदासा सोठ महला पंजवा बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर सगले रोग विदारे गुर पूरे की सरणी उबरे कार सगल सुवारे हर जन सिमरिया नाम धार ताव उतारा सतगुर पूरे अपनी कृपा तार रहाओ सदानंद करह मेरे प्यारे हर गोविंद गुरु राखिया वड्डी वड्याई नानक करते की साचे शब्द सत पाखिया सोठ महला पंजवा पै कृपाल स्वामी मेरे तत् सच है दरबार सतगुर ताप गवाया भाई ठंड पई संसार अपने जिये जंत आपे राखे जमै कि हड़तार हर के चंद उतार सुदसदा प्रभ सिमर भाई दुख किल वह काटन हार रहाओ तिसकी सरणी उपरह पाई जन रचया सब कोई करण कारण समरथ सो पाई सचै सची सोए नानक प्रभु त्याहिया पाई मन तन शीतल होए सुरठ महला पंजवा संत हो हर हर नाम त्याई सुख सागर प्रभ सराओ नाही मन जिंदे अड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरा ताप गवाया अपनी कृपा तहारी पार ब्रह्म प्रभ हे दयाला दुख मिटिया सब परवारी सब निदान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पात राखी परमेश्वर उधरिया सब संसार सुरठ महला पंजवा मेरा सतगुरु रखवाला हुआ तार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया हर गोविंद नवा निरवा रहाओ ताप गया प्रभ आप मिटाया जन की लाज रखाई सात संगत दे सब फल पाए सतगुरु कह बल जाए हलत बल प्रभ दोवें सवारे हमरा गुण अवगुण न बिचारिया अटल वचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक तारिया सुरठ महला पंजवा जी जंतर सब तिसके किए सोई संत सहाई अपने सेवक की आपे राखै पूर्ण पही बढ़ाई पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुर पूरा पूरी सब राखी होए सर्व दयाल रहाओ आन दिन नानक नाम ते आए जी प्राण का दाता अपने दास कहो कंठ लाए राखै ज्यो बारक पित माता सुरठ महला पंजवा कर तीजा चौपदे को ओंकार सतगुर पुरसार मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया सिकदार होने पति आया अमरा हो आगे चिहरा मिल राजन राम बेरा ढूंढन कथो न जाई गोविंद भेटे गुर गोसाई रहाओ आया प्रभ दरबारा ता सगली मिटी पुकारा लभद अपनी पाई ता कत आवै कत जाई तह सच न्याय नबेरा ऊहा सम ठाकुर सम चेरा अंतर जामी जान बिन बोलत आप पछान सर्वतान को राजा तह अनल शब्द अगाजा तिस बह क्या चतुराई मिल नानक आप गुवाई सुरठ महला पंजवा हृदय नाम वसाए हो कर बैठे गुरु त्याए हो गुर पूरा सच कहया सो सुख साचा लहया अपना होयो गुर मेहरवाना अनंत सो कल्याण मंगल स्यों कर आए कर स्नान रहाओ साची गुर वडियाई ताकि कीमत कहन न जाई सिर सहा पातशाह गुर भेटत मन ओ महासल पराछ लाते मिल सात संगत कै साथे गुण निधान हर नामा जाप पूर्ण हुए कामा गुर की नौ मुक्त द्वारा सब सिष्ट कर जयकारा नानक राम मेरा स्वाथी जन्म मरण पहला थे सुरठ महला पंजवा गुर पूरा कृपा तहारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर स्नान ग्रह आए अनंत मंगल सुख पाए संत हो राम नाम निस्पर गया उठत बैठत हर हर आई है आन दिन सुकृत करिया रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़ भागी पाए कोट जन्म के किल विखर नासे हर चरण ही उतलाए उस्तत करो सदा प्रभ अपने दिन पूरी कल राखी दिए जन साहब हे पवित्रा सतगुरु की सच साखी बिघन बनासन सब दुख नासन सतगुरु नाम दृढ़ाया खोए पाव हे सब पावन जन नानक सुख कर आया सुरठ महला पंजवा साहेब गुणी गहेरा कर लस्पर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला साहब जी भय दयाला जप अंदरहो गुरु चरणा पाओ कत नहीं प्रभ सरणा रहाओ तेरा दासा हृदय मुरारी प्रभ अवजलनी मुसारी बाल धन तकिया तेरा तू भार ठाकुर मेरा जिन दिन साध संग पाया सो प्रभ आप तराया हर कृपा नाम रस दिया कुशल खेम सब थिया होए प्रभु सहाई सब उठ लागी पाई सास सास प्रभ त्याई है हर मंगल नानक गाई है सुरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा प्रभ मिलियो मन पावंदा पूरा गुर कृपा धारी तांगत वही हमारी
ਹਰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਨ ਲੈਂਦਾ ਨਿਤ ਬਾਜੇ ਅਣਹਤ ਬੀਨਾ ਰਹਾਓ ਹਰ ਤਣ ਕੀ ਉੜ ਸੁਤਾਣੀ ਸਭ ਜੂ ਕੀ ਕਾਣ ਲੋ ਕਾਣੀ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਾ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਸਕ ਰਸਕ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਕਾਟਿਆ ਜਮ ਕਾ ਫਾਸਾ ਮਾਨ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ਜਹ ਪੇਖਾ ਤਹ ਸੋਈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਸਭ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੁਖ ਲਾਤੇ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਅਟਲ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਠੰਡ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ਤਾਪ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਪਰਵਾਰੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਹੈ ਰਾਖੀ ਸਣ ਸੱਚੇ ਕੀ ਤਾਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਹੋਆ ਰਖਵਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿ ਸੁਖਨ ਮੈਂ ਉਪਜੇ ਮਨ ਹੋਆ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਰਹਾਓ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀ ਉਦਾਰੂ ਤਿੰਨ ਸਗਲਾ ਰੋਗ ਵਿਦਾਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਬਾਤ ਸਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸੰਭਾਰਿਆ ਮਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗੁਰ ਕਾਜ ਵਿਦ ਭਉ ਸਾਖੀ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਇਲਾਜ ਰਾਖੀ ਬੋਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਗਹੇ ਰਾਜਾ ਆਪ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੱਚ ਸਾਖੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪੈ ਜੋ ਰਾਖੀ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ ਵਾਲ ਨਵਿੰਗਾ ਹੋਆ ਮਜਨੂਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸੇ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਕਿਲ ਵਿਖਨਾਸੇ

और साध गाव है गुण एक निरंकार रहाओ। साध की शोभा अतमसकीनी संत बड़ाई हर जस चीनी, आनंद संतन के भगत गोविंद, सुख संतन के बिनसी चिंद। जय साध संतन हो वह एकत्र, तह हर जस गाव है नाद कवित। साध सभा में अनंद विश्राम, उन संग सो पाए जिस

बिन सजाए जो निमख महे सो अलप सुख भनिय रहाओ प्रत पल अपियाओ दे कछ ऊन न होई सास सास संभालता मेरा प्रभ सोई अछल अशीद अपार प्रभ ऊंचा जाका रूप जब जब कर है आनंद जन अचरज अनूप सामत देह दयाल प्रभ जित तुम है अराधा नानक मंगे दान प्रभ रेन पग सादा तना श्री महला पंजवा जिन तुम भेजे तिन्ह बुलाए सुख सहज सेती कर आओ अनंद मंगल गुण गाओ सहज तुन निहचल राज कमाओ तुम कर आवो मेरे मीत तुमरे दुखी हर आप निवारे अपदा पई बतीत रहाओ प्रगट कीने प्रभ करने हारे नासन भाजन थाके कर मंगल वाजे नित वाजे अपने खसम ने वाजे अस्थिर रहो डोलो मत कबहू।

देखो पसार नैन हो सुनो, देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन, प्राण पथ जित राख सगल है मरना रहाओ, चंदन चुआ रस भोग करता नेके, बिखिया बिकार देख सगल है फीके, एक गोविंद को नामनी को कहत है साध जन, तन तन आपन था प्यो हर जपना, निमुख जा प्यो अर्थ द्रव देख कछ संग नाही चलना, जा कोरे करम भला तन ओट गही संत।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद गहरी करके नीव कदाई ऊपर मंडप छाए मारकंडे तैको अधिकाई जिन तृण धार मुंड बुलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ करत हो बिन सजाए झूठी देही रहाओ मेरी मेरी कहरों करते दुर्योधन से भाई बारह जोजन छतर चले था देही गर्जन खाई सर्व स्वयं की लंका होती रावण से अधकाई कहां पे उधर बांधे हाथी खन में पही पराई दुर्बा से सो कठ गौरी जादवे फल पाए कृपा करी जन अपने ऊपर नाम दियो हर गुण गाए दस बेरा गण मोहे बस की ने पंचो का मिटनावो सत्र दोए परे अमृतसर बिख को मार कढ़ावो पाछे बह न अवन पावो अमृत वाणी करते उचरो आत्म को समझाओ रहाओ बजर कठार मोहे है चीना कर्म नित लग पावो संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो ए संसार ते तभी छूटो जो माया न लपटावो माया नाम गर्भ जौन का ते ताज दर्शन पावो एत कर भगत करे जो जन तिन पौ सगल चुकाई है कहत नाम देव बार क्या परमो ए संजम हर पाई है मारवाड़ जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला जो करंक निसनाद बालहा त्यों मन त्यों मेरे मन रामैया तेरा नाम रूडो रूप रूडो अतरंग रूडो मेरो रामैया रहाओ ज्योतरणी को इंद्र बाला कुसंबास जैसे पवरला ज्यो कोकुल को अंब बाला त्यों मेरे मन रामैया चाकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसला ज्योतरणी को कंत बाला त्यों मेरे मन रामैया मर को जैसे कीर बाला चात्रक मुख जैसे जलतरा मछली को जैसे नीर बाला त्यों मेरे मन रामैया साधक सिद्ध सगल मन चाहे बिल्ले का हूं डीठला सगल पवन तेरो नाम बाला त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पुंडरक बना पांचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर ना चंती ना चिना पहल पुरसा बिना अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचे पिंदी में सागरा रहाओ नाचंती गोपी जना नैया ते बैरे कना तर्क नाचा प्रमिया चा केसवा

जन को पूरण दीजै। होम बल बल जाओ रमैया कारणे कारण कवन अबोल रहाओ। बहुत जन्म बिछरे थे माधो एहो जन्म तुम्हारे लेखे। कैरवदास आस लग जीवो चिर पैओ दर्शन देखे। चित सिमरन को नैन अवलोकनो श्रवण बानी सो जस पूर राखो। मन सो मधुकर करो चरण हृदय तरो रसन अमृत राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोविंद स्यो जिन कटै मैं तो मोल महगी लई जी सटाए रहाओ। साध संगत बिना भाव नहीं उपजे भाव बिन भक्ति नहीं होए तेरी। कह रवदास इक बेनती हर स्यो पैज राखो राजा राम मेरी। नाम तेरो आरती मज्जन मरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पास सारे रहाओ। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अम्बला नाम तेरा चंदनो का जपे नाम ले तुझे को चारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेला माए पसारे। नाम तेरे की जोत लगाए पयो जारो पवन सगलारे। नाम तेरा तागा नाम फूल माला पार अठारह सगल जूठारे। तेरो किया तुझे कार पू नाम तेरा तू ही चवटलारे। दस अठाठ सठे चारे खानी यह वर्तन है सगल संसारे। कह रवदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे। तनासरी बाणी भगतां की तरलोचन एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नारायण निंदस काए भूली गवारी दुकृत सुकृत थारो करमरी रहाओ। संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन्म दे मिलियो सारंग पान रे। करम कर कलंक पीट श्री बिस्का दीपक स्वामी तांचे रे स्वार्थी पंखी राय गरड़ तांचे बादवा। करम कर अरण पिंगलारी अनक पात कहरता त्रिभवन नाथरी। तीरथ तीरथ तीरथ तीरथ भ्रमता लहे न पारी। करम कर कपाल मफीट श्री अमृत ससी तेन लक्ष्मी काल पतार सिख सुनागन दी चे नाथं। करम कर खार मफीट श्री दादी ले लंका गढ़ उपाड़ी ले रावण। वाणसाल बेसल आन तो खीन ले हरी। करम कर कछोटी मफीट श्री पूर्वलो कृत कर्म ना मिटेरी। कर गेहनता चे मोहे जापिय ले राम चे नाम भदत तरलोचन राम जी श्री सैन। तूप देव कृषा जारती वर्ण जौ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को रहाओ। उत्तम दीरा निर्मल बाती तू ही नरंजन कमलापति। रामा भक्त रामानंद जाने पूर्ण परमानंद बखाने। मदन मूर्त पैतार गोविंदे सैन पणे पज परमानंदे पीपा। कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति कायो धूप दीप नई बेदा कायो पूजो पाती। का बो खंड खोजते नवनिध पाई ना किछ आए बो ना किछ जाए बो राम की दुहाई रहाओ। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे पीपा परणवे परम तत् है सतगुरु लखावे तन्ना। गोपाल तेरा आरता जो जंतुमरी भक्त ग्रंथे तिनके का सवारता रहाओ। दाल सीधा मांगो कियो हमरा खजी करन नित जियो पनिया छाद निका। अनाज मंगो सत सीका गो पैस मंगो लावे रीकता जंतुरी चंगेरी कर की हन चंगी जंतना ले वे मंगी। जैत श्री महला चौथा कर पहला चौप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे हीरे रतन नाम हर वस्या गुर हाथ तरियो मेरे माथा। जन्म जन्म के किलबिख दुख तरे गुर नाम दियो रे नलाथा। मेरे मन पज राम नाम सब अर्था गुरपुरे हर नाम दड़ाया बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ। बिन गुर मूड पए मन मुख ते मोह माया नित फाथा। तिन साधु चरण सेवे कबू तिन सब जन्म अकाथा। जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल्यो जन्म सन्नाथा। मोको कीजे दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा। हम अंदले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंदले को गुर अंचल दीजे जन नानक चले मिलन था। जैत श्री महला चौथा हीरा लाल कमोल कह पारी बिन गाहक मीका काखा। रतन जो गाहक गुर साधु देखियो तब रतन बिकानो लाखा। मेरे मान गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिलिये हीर पराखा राव। मनमुख कोठी अज्ञान देरा तिन कर रतन ना लाखा। ते उजड़ भरम मुए गावारी माया भयंग बिकचाखा। हर हर साध मेलो जानी के हर साधु शरण हम राखा। हर अंगीकार करो प्रभु स्वामी हम परे पाक तुम पाखा। जे बाक्या गुण आख बखाने तुम वड अगम वड पुरखा। जन नानक हर कृपा तारी पाखान डुबत हर राखा। जैत श्री महला चौथा
हम बार कछु न जाने गात मित तेरे मूर्ख मगदियाना हर कृपा धार दीजे मातू तम कर लीजे मुगद सियाना मेरा मन अलसिया उगलाना हर हर आन मिला उगर साधु मिल साधु कपट खुलाना रहाओ गौर खिन खिन प्रीत लगावो मेरे हीरे मेरे प्रीतम नाम पराना बिनावे मर जाइए मेरे ठाकर ज्यो अमली अमल लुभाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर पाक पराना तिन हम चरण सरे वे खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा कर हर हर कृपा धारी मेरे ठाकर जन बिछरिया चिरी मिलाना तन तन सतगुर जिन नाम दड़ाया जन नानक तिस कुरबाना जैत सरी महला चौथा सतगुर साजन पुरख बट पाया हर रसक रसक फल लागे बा माया भयंग ग्रस्यो प्राणी गुर बचनी बेसर काढ़े बा मेरा मन राम नाम रस लागे बा हर किए पतत पवित्र मिल साध गुर हर नामे हर रस चाखे बा रहाओ तन तन बड़पाग मिलो गुर साधु मिल साधु लेवन मन लागे बा तृष्णा गन बुझी संत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गाए बा तिनके पाक खीन तुर पाए जिन सतगुर दस न पाए बा ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाए बा हर देव बिमल मत गुर साध पग सेवे हम हर मीठ लगाए बा जन नानक रेण साध पग मागे हर हुए दयाल दे बाए बा जैत श्री महला चौथा जिन हर हिरदे नाम ना बस्यो तिन मात की जे हर बांझा तिन सुनी दे फिरे बिनावे ओए खप खा मुए करांजा मेरे मन जाप राम नाम हर माजा हर हर कृपाल कृपा प्रवतारी गुर गयां दियो मन समझा रहाओ हर कीरत काल जुग पद उत्तम हर पाइये सतगुर माजा हौ बलिहारी सतगुर अपने जिनन गुप्त नाम परगाजा दर्शन साध मिलियो बड भागी सब किलब गए गवाजा सतगुर साहो पाया बड दाना हर की ये बहुगुण सांझा जिनको कृपा करी जग जीवन हर उतारे मन माजा धर्म राय दर कागद पारे जन ला नानक लेखा समझा जैत सरी महला चौथा सत्संग साध पाई बड़ भागी मन चल तो पे रूड़ा अनहत धुन बाजे नित बाजे हर अमृत धार रस लीड़ा मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा मेरे मन तन प्रीत लगाई सतगुर हर मिलियो लाए चपीड़ा रहाओ साकत बंद पै है माया बिख संचे लाए जकीड़ा हर के अर्थ खर्च नहै साके जमकाल सहे सिर पीड़ा जिन हर अर्थ श्री लगाया गुर साधु बहु सरदा लाए मुख धूड़ा हलत पलत हर सोभा पावे हर रंग लगा मन गूड़ा हर हर मेल मेल जन साधु हम साध जना का कीड़ा जन नानक प्रीत लगे पग साध गुर मिल साधु पखाण हरियो मन मूड़ा जैत सरी महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर सिमरो अगम पारा जिस सिमरत दुख मिटे हमारा हर हर सतगुर पुरख मिलावो गुर मिलिये सुखोई राम हर गुण गावो मीत हमारे हर हर नाम रखो उतारे हर हर अमृत बचन सुनावो गुर मिलिये प्रगट होई राम मधुसूदन हद माधो प्राणा मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना हर हर दया करो गुर मिलो पुरख निरंजन सोई राम हर हर नाम सदा सुखदाता हर के रंग मेरा मन राता

हर हर हर हर भक्त दृढ़ावो, हर हर नाम उमाहाराम, हर हर नाम दयाल त्या, हर के रंग सदा गुणगा, हर हर हर जस घूमर पावो, मेल सा संग उमाहाराम। आओ सके हर मेल मिला, सुन हर कथा नाम लैला, हर हर कृपा तार गुर मेलो, गुर मिलिए हर उमाहाराम। कर कीरत जस गमता, खिन खिन राम नाम गावा, मोको थार कृपा मिलिए।

बत रहे मेरे प्राण कर कृपा साधु संग पेटे पूर्ण पुरख सजान रहाओ प्रेम ठगौरी जिनको पाई तिन रस पियो पारी ताकि कीमत कह ना जाई कुदरत कवन हमारी लाए लाए लड़दास जाने अपने उदरे उदरन हारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण दुआरे जैत सरी महला पंजवां आए अनक जन्म भ्रम चरणी उदर दे अंध कूप ते लावो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान त्यान किच कर्म न जाना ना है निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभ हो बिखम नदी जाए तरणी सुख संपत माया रस मीठे ए ने मन में तरणी हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत हर नाम रंग अपरणी जैत श्री महला पंजवां हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकनावे पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिघन बिन से हर सेवा निचल गोविंद धाम भगवंत भगत को पाओ किच नाही आदर देव जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिन सतकाम चरण कमल हृदय गहो नानक सुख समूह बिसराम जैत श्री महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूल्यो मन मायो उर्जा माया उर्जायो जो जो कर्म कियो लालच लगते ते आप बंधायो रहाओ समझ न परि बिखे रस रचो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जान्यो नाहन बन को जन को तायो रतन राम कट ही कै पीतर ताको ज्ञान न पायो जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो जैत सरी महला नावा हर जू राख लियो पत मेरी जम को त्रास पयो और अंतर शरण गई कृपा निद तेरी रहाओ महापतत मुग्ध लोभी फन करत पाप अभारा पैमर बेको बिंस बिसरत नाहिन ते चिंता तंजारा किए उपाव मुक्त के कारण दैद उसको उठताया कटी पीतर वसे निरंजन ताको मरम न पाया नाहिन गुन नाहिन कछ जप तप कौन कर्म अब की जाए नानक हार परयोषण नागत अपैदान प्रभ दी जाए जैत सरी महला नौवा मन रे साचा गहो बेचारा राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो ये संसारा रहाओ जा को जोगी को जितहारे पायो नाहे ते पारा सो समित तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा पावन नाम जगत में हर को कबू नाय संभारा नानक चरण परयो जग बंधन राखो बिरद तुहारा जैत सरी महला पंजवा चांत एक ओंकार चांत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चित बवंदनीत खोल कपट गुर मेलिया।

दानी रहाओ जन पिसर पदर बेरा दना कसनेस दस संगीर आखर बे अपतम कसना दारद चू सबद तकवीर सब रोज गौतम दरहबा कर दे बदी खेल गाहे नानेकी कार कर दम मम ईचिनी अहवाल बद भक्त हम चु बकील गाफल बेनजर बेबाक नानक बुगोयद जंतरा तेरे चाकरा पाखाक ते लंग महला पहला कर दूजा ओंकार सतगुर प्रसाद पौ तेरा पांग खलड़ी मेरा चीत मैं दवाना पया अतीत कर कासा दर्शन की भूख मैं धर्मांगो नीता नीत तो दर्शन की करो समाए मैं धर्मांगत पिख्या पाए रहा केसर कुसुम मृग मैं हरन हरना सर्ब शरीरी चरणा चंदन भक्ता जोत इने ही सर्वे परमल करना के पट भांडा कहे न कोई ऐसा भक्त वरण मैं होए तेरे नाम निवे रहे लिवलाए नानक तिन दर पिख्या पाए तिलंग महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद इहो तन माया पाहिया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए मेरे कंत न भावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन से जय जाए हो कुरबाने जाओ मेहरबाना हो कुरबाने जाओ तिना के लैण जो तेरा नाओ तिना के हो सत कुरबाने जाओ रहाओ काया रंगन जे थी प्यारे पाइये नाम जीठ रंगन वाला जे रंगे सा वैसा रंगना डीठ जिनके चोले रतले प्यारे कान तिना के पास तूड़ तिना की जय मिले जी कहो नानक की अरदास आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानका मन कंथे पावे आपे ही रावे ते लंग महला पहला यानड़िये मानड़ा काय करे हे अपनड़े कर हार रंगो की ना माने सोनेड़े तन कबलिये बाहर क्या ढूंढे पैकिया दे सलाइया नैनी पाप का कर सिगारो ता सुहागन जानिए लागी जासो तेरे प्यारो यानी बाली क्या करे जा तन कंत न पावे कर्ण पला करे बो तेरे सा तन महल न पावे बिन कर्मा किच पाइये ना ही जे बहु तेरा तावे लब लो बंकार की माती माया माय समाणी इन्नी बाती सो पाइये ना ही पई कमणियाणी जाय पुछो सुहागणी वाहे किन्नी बाती सो पाइये जो किच करे सो भला करमानी है हिकम तो हुकम चकाइये जाके प्रेम पदार्थ पाइये तो चरणी चित लाइये सो कहे सो कीजै तन मनो दीजै ऐसा परमल लाइये कहे सुहागणी पैणे इन्नी बाती सो पाइये आप गवाया ता सोह पाईए और कैसी चतराई सो नदर कर देखे सो दिन लेखे काम ना निध पाई अपने कंत प्यारी सा सुहागन नानक सा सबराई ऐसे रंगराती सह की माती एनस पाए समाणी सुंदर सा स्वरूप चखण कहिए सा सियाणी तिलंग महला पहला जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसरा करी करी ज्ञान बेला लो तैसरा करी ज्ञान बेला लो पाप की जानिए लै काबलो ताया जोरी मंगे दान बेला लो शर्म धर्म दो छाप खलोए कूड़ फेरे प्रदान बेला लो का जिया बामना की गल थकी अगत पड़ा शैतान बेला लो मुसलमानिया पड़े कतेबा कास्ट मैं करे खुदाए बेला लो जा सनाती हुए हिदबाणिया ए पी लिखे लाए बेला लो खून के सोहले गावे नानक रत का कुंगू पाए बेला लो साहेब के गुण नानक गावे मासपुरी विच आख मसूला जिन पाई रंग रवाई बैठा विखे वख केला सच्चा सो साहेब सच तपाव सचड़ा न्याओ करेग मसूला काया कपड़ टुक टुक हो सी हिंदुस्तान समाल सी बोला आवन अठत्तर जान सतानवे होर पी उठ सी मर्द का चेला सच की बाणी नानक आखे सच सुनाई सी सच की बेला तिलंग महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब आए हुक्म खसमाओ हुक्म सब बरतनी सच साहिब साचा खेल सब हरतनी सलायो सच सब ऊपर हरतनी जिस नाहे कोई सरीक किस लेके होंगनी राव पौन पानी तरती आकाश कर मंदर हर बनी बिच वरते नानके आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नितने पल कर्म कमाए बफा विद्रमतिया जप जाने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जीतिया ऐसा बाजी सह सार न चेते हर नामा खेन मैं बिनसे सब झूठ मेरे मन त्याए रामा राव सौ बेला चित नावे जित आए कंटक काल करसे तिस नानक लय छड़ाए जिस कृपा कर हिरदय वसे तिलंग महला पंजवां कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद खाक नूर करदंग आलम दुनियाए असमान जिमें दरखताब पैदाइश खुदाए बंदे चसम दीदंग फनाए दुनिया मुरदार खुरदनी गाफल हवाए रहाओ गैबान हैबान हराम कुस्तनी मुरदार बखोराए दिल कबज कबजा का दरो दो जिक सजाए
ਵਲੀ ਨਿਆਮਤ ਬੇਰਾਦਰਾਂ ਦਰਬਾਰ ਮਿਲਕ ਖਾਨ ਆਏ, ਜਬ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਬਸਤਨੀ ਤਪ ਚੇ ਕਾਰੇ ਬਿਦਾਏ, ਹਵਾਲ ਮਾਲੂਮ ਕਰਦੰਗ ਪਾਕ ਅੱਲਾ ਬਗੋ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸ ਪੇਸ਼ ਦਰਬੇਸ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਲੰਗ ਘਰ ਦੂਜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੁਦ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਤੇਰੀ ਮਨ ਟੇਕ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪ ਨਾਨਕ ਏਕ, ਸਭ ਉਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾਤਾ।

सतगुर प्रसाद चेतना है तो चेत लै निस दिन में प्राणी चिन चिन औद बिहात है फूटे कट ज्यो पानी रहा हर गुण का हे न गावई मूर्ख ज्ञाना झूले झूठे लालच लाके न मरन पछाना अजूहू कछु बिगड़ियो नहीं जो प्रभ गुण गावे कहो नानक ते भजन ते निरपै पद पावे ते लंग महला नवा जाग लियो रे मना जाग लियो कहां गाफल सोया जो तन पिजिया संग ही सोपी संग ना होया रहाओ मात पिता सतबंध जन हित ता जा स्यो कीना जियो छुट्यो जब देह ते डार अगन में दीना जीवत लो व्यवहार है जग को तुम जानो नानक हर गुण गाय ले सब सुपन समानो तिलंग महला नवा हर जस रे मना गाय लै जो संगी है तेरो अवसर बीत जाता है कहो मान लै मेरो रहाओ संपत रथ धन राज स्यो अत नेहो लगायो काल फस जब गल परी सब पयो परायो जान बूझ के बाबरे तै काज बिगारियो पाप करत सुख च्यो नहीं न गर्भ निवारियो जय बिद गुर उपदेसिया सो सुन रे पाई नानक कहत पुकार कै गह प्रभ शरणाई तिलंग बाणी भक्तां की कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेद कते इफ्तरा भाई दिल का फिक्र ना जाए टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए मंदे खोल दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे एह जो दुनिया सेहर मेला दस्तगीरी नाहे रहाओ द्रोग पड़ पड़ खुशी होए बेखबर बाद बकाए हक सच खालक कलक म्याने स्याम मूरत नाहे असमान म्याने लग लहंग दरिया कुसल गर्दन बूद कर फकर दायम लाए चश्मे जय तहां मौजूद अल्लाह पाक पाकै सक करो जे दूर हो दूसर होए कबीर कर्म करीम का ओ करे जा।

सच विखा लिया सोई साचे गुण गावे सच समावे सच विखे सब सोई नानक सच असाव साची नाही सच निस्तारा होई साचे सतगुर साच बुझाया पथ राखे सच सोई राम सच्चा भोजन भाव सच्चा है सच्चे नाम सुख होई राम साचे नाम सुख होई मरे न कोई गर्भ न जुनी वासा ज्योति ज्योत मिलाई सच समाई सच नाय प्रगासा जिनी सच जाता से सचे होए अंधन सच ध्यान नानक सच नाम जिन हिरदे वस्या ना विछड़ दुख पायन सची बाणी सचे गुण गावे तित घर सोला होई राम निर्मल गुण साचे तन मन साचा विच साचा पुरख प्रभ सोई राम सब सच वरतै सचो बोले जो सच करे सो होई जै देखें तै सच पसरिया अवर न दूजा कोई सचे उपजे सच समावे मर जन्मै दूजा होई नानक साहब केश आपे करता आप करावे सोई सच्चे भगत सोहे दरबारे सचो सच वखाणे राम घाट अंतरे साची बाणी साचो आप पछाणे राम आप पछाणे ता सच जाने साचे सूझी होई सच्चा शब्द सच्ची है शोभा साचे ही सुख होई साचरते भगत एक रंगी दूजा रंग ना कोई नानक जिस को मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई सूई महला तीजा जुग चारे धन जे भवै बिन सतगुर सुहाग न होई राम निश्चिल राज सदा हर केरा तिसमन अवर न कोई राम तिसमन अवर न कोई सदा सच सोई गुरमुख को जाण्या धन फिर मिलावा हुआ गुरमति मन मान्या सतगुर मिलिया तां हर पाया बिन हर नावे मुक्त न होई नानक कामण कंते रावे मन मान्या सुख होई सतगुर सेव धन बालड़िए हर वर पावै सोई राम सदा होवे सुहागनी फिर मैला वेस न होई राम फिर मैला वेस न होई गुरख बुझे कोई हमें मार पछाण्या करनी कार कमावे शब्द समावे अंतर एको जाण्या गुरमुख प्रभ रावे दिन राति आपना साची शोभा होई नानक कामण पर रावे आपना रब रह प्रभ सोई गुर की कार करे धन बालड़िए हर वर दे मिलाए राम हर के रंग रती है कामण मिल प्रीतम सुख पाए राम मिल प्रीतम सुख पाए सच समाए सच वरतै सब थाई सच्चा सिगार करे दिन राति कामण सच समाई हर सुखदाता शब्द पछाता कामण लया कंठ लाए नानक मैली मैल पछाणे गुरमति हर पाए सा धन बाली धुर मेली मेरे प्रभ आप मिलाई राम गुरमति कट चानण हुआ प्रभ रव रहा सब थाई राम प्रभ रव रहा सब थाई मन वसाई पूर्व लिखिया पाया से सुखाली मेरे प्रभ पाणी सच सिगार बनाया कामण निर्मल होमे मलक होई गुरमत सच समाई नानक आप मिलाई करते नाम नवे निध पाई सोही महला तेजा हर हरे हर गुण गावो हर गुरमुखे पाए राम अंध नु शब्द रवो अनहद शब्द विजाए राम अनहद शब्द विजाए हर जियो कर आए हर गुण गावो नारी अंधन भगत करै गुर आगे सा धन कंत प्यारी गुर का शब्द वस्या घट अंतर से जान शब्द सुहाए नानक तिन कर सदी सोहिला हर कर कृपा कर आए भगता मन आनंद भया हर नाम रहे लिवलाए राम गुरमुखे मन निर्मल हुआ निर्मल हर गुण गाए राम निर्मल गुण गाए नाम मन वसाए हर के मत बाणी जिन मन वस्या से ही जान निस्तरे घाट घाट शब्द समाणी तेरे गुण गावे सहज समावे शब्दे मेल मिलाए नानक सफल जन्म तिन केरा जे सतगुर हर मार्ग पाए सतसंगत स्यों मेल पया हर हर नाम समाए राम गुर के साबद साध जीवन मुक्त भये हर के नाम लिवराए राम हर के नाम लिव लाए राम हर नाम चित लाए गुरमेल मिलाए मनुआ रत्ता हर नाले सुखदाता पाया मोह चुकाया अंधे नाम संभाले गुर सबदे राता सहजे माता नाम मन वसाए नानक तिनकर सद ही सुहिला जे सतगुर सेव समाए बिन सतगुर जग भरम पुलाया हर का मैल न पाया राम गुरमुखे एक मेल मिलाया तिनके दुख गवाया राम तिनके दुख गवाया जा हर मन पाया सदा गावे रंग राते हर के भक्त सदा जन निर्मल जुग जुग सद ही जाते साची भक्त करै दर जापै घर दर सच्चा सोई नानक सच्चा सोईला सच्ची सच बाणी शब्द ही सुख होई सूही महला तीजा जे लुड़े वर बालड़िए ते गुरचरणी चित लाए राम सदा होवे सुहागणी हर जियो मरे न जाए राम हर जियो मरे न जाए गुर के सह सुभाए सासन सा धन कंत प्यारी सच संजम सदा है निर्मल गुर के शब्द सिगारी मेरा प्रभ साचा सद ही साचा जिन आपे आप हो पाया नानक सदा पे रावे अपना जिन गुरचरणी चित लाया पिर पायड़ा बालड़िए अंधन सहजे माती राम गुरमति मन अंध पया तैत तन मैल न राती राम तित तन मैल न राती हर प्रभ राती मेरा प्रभ मेल मिलाए आंदे रावे हर प्रभ अपना विचों आप गवाए गुरमत पाया सहज मिलाया अपने प्रीतम राती नानक नाम मिले वड्याई प्रभ रावे रंग राती पिर रावे रंग रातड़िए पिर का मैल तिन पाया राम सो सहो अत निर्मल दाता जिन विचों आप

0: आप दिसै वे जात न होए, एको एक कहो ना ही पो को, एक करता करे करावे सोए, शब्द मोए मन मानते मारिया, ठाक रहे मन साचे धारिया, और न सूझ जाए गुर को वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया। बुला महला पहला, गुर बचनी मन सहज ध्याने, हर के रंग रत्ता मन माने, मनमुख भरम भुले बोराने, हर बिन क्यों रही है गुरसद पिछाने, बिन दर्शन कैसे जीवो मिरमाई, हर बिन जीरा रह न सके, खिन सतगुर बूझ बुझाई रहाओ, मेरा प्रभ बिसराए, हो मरो दुखाली, सास ग्रास जपो अपने हर भाली, सद बैरागर हर नाम निहाली, आप जाने गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए, प्रभ अगम गोचर देख दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए, हमें मेट चले गुर शब्द समाए, हमें मेट चले गुर शब्द समाए, मनमुख विचड़े खोटी रास, गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा धारी दासन दास जन, नानक हर नाम धन रास, बुला मलती जकर पहले कुंकर सतगुर प्रसाद, त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कुटंब सहत स्यों, जित हुण खसम ना पाया, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे, अहला जन्म गवाया, दूजा भाव न देई लेव लागण, जिन हर के चरण विसारे, जग जीवन दाता जन सेवक तेरे, तिन के तह दुख नवारे रहाओ, तू दयाल दया पत दाता, क्या एह जंत विचारे, मुक्त बंद सब तो जिते हुए, ऐसा आख बखाने गुरमुख हो, वैसो मुक्त कही है मानमुख बंद विचारे, सोजन मुक्त जैसे एकलिव लागी, सदा रहे हर नाले, तिन की गहन गत कहीं न जाई, सच्चे आप सुवारे भरम भुलाने से, मन मुख कहिए नार वार ना पारे, जिसनो नदर के सोई जन पाए, गुर का शब्द संभाले, हर जन माया महि निस्तारे, नानक भाग होवे जिस मस्तक, काल है मार बेदारे, बला महला तीजा, अतुल क्यों तुलिया दे, अतुल क्यों तो लिया जाए, दूजा होए तो सूझी पाए, तिसते दूजा नाहीं कोए, तिसकी कीमत किकू होए, गुरप्रसाद वसै मान आए, ताको जाने दुबदा जाए रहाओ, आप सराफ कसवटी लाए, आपे परखे आप चलाए, आपे तोले पूरा होए, आपे जाने एक उस होए, माया का रूप सब तिसते होए, जिसनो मेले सो निर्मल होए, जिसनो लाए लगे तिस आए, सब सच दिखा लेता सच समाए, आपे लिव धात है आपे, आप बुझाए आपे जापे, आपे सतगुर शब्द है आपे, नानक आप सुनाए आपे, नानक आख सुनाए आपे, बिलाव महला तीजा, साहिब ते सेवक सेव साहिब ते क्या को करे बहाना, ऐसा एक तेरा खेल बनया है, सब में एक समाना, सतगुर परचय हर नाम समाना, जिस कर्म होवे सो सतगुर पाए, अंदन लागे सहज ध्याना रहाओ, क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या को करे अभिमाना, जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी, तब कोई करो दिखाव खयाना, आपे गुरचेला है आपे, आपे गुणी निधाना, ज्यों आप चलाए तिवे कोई चाले, ज्यों हर भावे भगवाना, कहत नानक तू साचा साहिब, कौन जाने तेरे काम, एक ना घर में दे वड्याई, एक भरम भवे अभिमाना, बला महला तीजा, पूरा थाट बनाया पूरे, वेखो एक समाना, इस प्रपंच में साचे नाम की वड्याई, मत को तो रुगमाना, सतगुरु की जिसनों मत आवे सो सतगुरु माए समाना, एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा, रहाओ चो जुगां का हुन नवेड़ा, नर मनुखा नो एक निधाना, जन जत संजम तीर्थ उन्हां जुगां का धर्म है, कल मैं कीर्त हर नामा, जुग जुग आपो अपना धर्म है, सो देखो वेद पुराना, गुरमुख जी नीति आया हर हर जागते, पूरे परवाना, कहत नानक सची सो प्रीत लाए, चूके मन अभिमाना, कहत सुनत सबे सुख पावे, मानत पाहे निधाना, बड़ा महला तीजा, गुरमुख प्रीत जिसनों आपे लाए, तित घर बिलावल गुर शब्द सुहाए, मंगल नारी गावे आए, मिल प्रीतम सदा सुख पाए, हों तिन बलहारे जिन हर मन विसाए, हर जान को मिलिया सुख पाइए, हर गुण गावे सहज सुभाए, रहाओ सदा रंग राती तेरे चाहे, हर जियो आपसे मनाए, आपे सुभा सद ही पाए, गुरमुख मेले मेल मिलाए, गुरमुख राते शब्द रंगाए, निज करवासा हर गुण गाए, रंग चलूले हर रस पाए, हर रंग कदे न उतरे साथ समाए, अंतर शब्द मिटिया अज्ञान अंधेरा, सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा, जो साचे राते तिन बोर न फेरा, नानक नाम दड़ाए पूरा गुर मेरा, बिलावल महला तीजा, पूरे गुरते वड्याई पाई, चिंतना वस्या मनाई, हमें माया शब्द जड़ाई, दार साचे गुरते शोभा पाई, जगदीश सेवो मैं अवरना काजा, अंदन आंद होवे मन मेरे, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा, ਰਹਾਉ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਮਨ ਤੇ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਗੋ ਤੇ ਸਦ ਬੁਝਾਈ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਕੋ ਸੰਸਰ ਵੇਖੈ ਬਹੁੜ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਮ ਪੇਖੈ ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੋਟ ਨਿਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਖਾਏ ਗਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਸਦ ਹੀ ਲਾਗਾ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਅੰਦਨ ਗਾਵੇ ਕੋ ਨਾਮ ਇਸ ਯੁਗ ਮੇ ਵਡਿਆਈ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਸਮਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸਨ ਬੁਝੀ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਾਗ ਬਲਾਵ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰਤੀ ਜਾਏ ਕੋਮਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਦਮ ਮਤ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰੇਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਨਾ ਜਿਉਂ ਨਟੂਆ ਤੰਤ ਵਜਾਏ ਤੰਤੀ ਨੋ ਜਿਉਂ ਨਟੂਆ ਤੰਤ ਵਜਾਏ ਤੰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਜੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜਪਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਮਸਤਕ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਬਸਨਾ ਰਹਾਓ ਮਾਇਆ ਗ੍ਰਸਤ ਭ੍ਰਮਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਜਨ ਆਪਣਾ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹਰ ਨਾਕ ਸੁਗ੍ਰਸਿਓ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹਰ ਨਾਕ ਸੁਗ੍ਰਸਿਓ ਹਰ ਰਾਖਿਓ ਹਰ ਸਰਨਾ ਕਵਨ ਕਵਨ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕਹੀਏ ਹਰ ਕੀਏ ਪਤਤ ਪਵੰਨਾ ਉਹ ਢੋਵੈ ਢੋਰ ਹਾਥ ਚਮ ਚਮਰੇ ਹਰ ਉਧਰਿਓ ਪਰੇ ਉਹ ਸਰਨਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਗਤ ਭਵ ਤਾਰਨ ਹਮ ਪਾਪੀ ਰਾਖ ਪਪਨਾ ਹਰ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਾਸ ਹਮ ਕਰਿਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਸੰਨਾ ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ
1: ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਗਿਆਨ ਮਤੀ ਸਰਨਾਗਤ ਪੁਰਖ ਅਜਨਮਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰੋ ਹਮ ਪਾਥਰਹੀਨ ਅਕਰਮਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮੇ ਰਾਮਾ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਸ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਤਿਆਗੋ ਨੇਹ ਫਲ ਕਾਮਾ ਰਹਾਉ ਹਰਜਨ ਸੇਵਕ ਸੇ ਹਰ ਤਾਰੇ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਉਪਮਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰੋ ਹਰ ਜਪੀਏ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾ ਨਾਮਹੀਨ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਤੇ ਤਿੰਨ ਵਡ ਦੁੱਖ ਸਹਾਮਾ ਓਏ ਫੇ ਫੇ ਜੋਨ ਭਵਾਈ ਹੈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮੂੜ ਅਕਰਮਾ ਹਰ ਜੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਧੁਰ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਵੱਡ ਕਰਮਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਰੜਾਇਆ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਜਨਮਾ ਬਿਲਾਵਨ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਮਰਾ ਚੇਤ ਲੁਭਤ ਮੋਹੇ ਵਿਖਿਆ ਬਹੁ ਦੁਰ ਮਤ ਮੈਲ ਪਰਾ ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਾ ਸਕੈ ਪ੍ਰਭ ਹਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮੁਗਧ ਤਰਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਨਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਰ ਹਰਾ

जस करा तुमरे संग लगे से उदरे ज्यो संग काष्ट लोह तरा सागत नर होशी मत मध्यम जिन हर हर सेव न करा ते नर भागहीन दोहचारी ओ जन्म मूए फिर मरा जिनको तुम

चुका ई सब चुके जम के छंदे जप मन हर हर नाम गोबिंद बड़भागी गुर सतगुर पाया गुण गाए परमानंदे रहाउ साखत मूड माया के बदक विच माया फिरै परनंदे तृष्णा जलत किरत के बादे ज्यो तेली बलद पवंदे गुरमुख सेव लगे से उदरे बड़भागी सेव करन दे जिन हर जपया तिन फल पाया सब टूटे माया फंदे आपे ठाकुर आपे सेवक सब आपे आप गोविंदे जा नानक आपे आप सब वरते ज्यो राखे तिवे रहंदे इक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बलब महला चौथा पड़ताल कर तेरवा बोलो भैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगत तारनो हर भर पूरे रहया जल थले राम नाम नित गाइए हर दुख बिसारनो रहा हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख बिसारन हारा गुर भेटिया है मुगत दाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम कर आसा भाव दूजा बिनस बिनासा विच आसा हुए निरासी सूजन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो जा नानक तिस पग लावनो राग बिलाव महला पंजवा चौपदी कर पहला इक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवे ते सोह क्यों मिलिये पर बनासी तू ही कर कृपा मुहि मार्ग पावु सा संकै अंचल लाभ क्यों तरिये बिखिया संसार सतगुर बो हेथ पावे पार रहाउ पवन चुलारे माया देह हर के भगत सदान थिर से हर सुख ते रह है निरारा सिर उपर आप गुरु रखवारा पाया वेड़ माया सर भयंगा होमे पचे दीपक दीख पतंगा सगल सीगार करे नी पावे जा होय कृपाल तां गुरु मिलावे हो फिरो उदासी मैं एक रतन दसाया निर्मूल की हीरा मिले ना उपाया हर का मंदिर तिसमें लाल गुरु खोलिया पड़दा देख पई निहाल जिन चाक्या तिस आया साध ज्यों गुंगा मन मह बिस्माद आंध रूप सब नदरी आया जा नानक हर गुण अक्स माया बिलब महला पांचवा सर्व कल्याण किए गुरुदेव सेवक अपनी लायो सेव बिघन लागे जप अलख अपीव धारत पनीत भई गुण गाए दुरत गया हर नाम त्याई रहा सबनी थाई रव्या आप आजुगा जा कवट प्रताप गुरप्रसाद न होए संताप गुर के चन लगे मन मीठे निर्भगन होए सब थाई उठे सब सुख पाए सतगुर टूटे पार ब्रह्म भय रखवाले जिथे किथे दिसहि नाले नानक दास खसम परत पाले बिलब महला पंजवा सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे अगंत गुण ठाकुर प्रभ तेरे मोहे ना तुमरी सरनाई कर कृपा हर चरण ते आई दया करो बस हो मन आए मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए रहा हूं।

हम अपराधी सब भूलते तुम बख्शनहारे रहो। हम अवगन कर है असंक नीत तुम निर्गुण दातारे। दासी संगत प्रभु त्यागे कर्म हमारे तुम देव हो साव किश दया धर हम आकृत कनारे। लाग परे ते दान स्यो नह चेत कस मारे तू ते बार किश नहीं भव कटन हारे। कौ नान शरण दयाल गुर लिहो मुगत उदहारे। बिलव महला पंजवा दोसना काहू दीजिए प्रभ अपना त्याई है जिस सुख होए कना मन सो।

रहाउ। ज्यों तुम राखो त्यों रहा अवर निचारा, निधरिया तर तेरिया एक नाम आधारा। जो तुम करहो सोई भला, मन लेता मुक्ता, सब समगरी तेरिया सब तीनी जुगता। चरण पकारो कर सेवा जे ठाकुर भावै, हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे। बलब मोहल्ला पांचवा, मिरत हसे सिर ऊपर पसवानी बूझे, बार साध अहंकार मैं मरना नहीं सूझे। सदगो सेव वापना कहे फिरो अभागे, देख कसुंबा रंगला काहे भूल लागे। राव कर कर पव तरप किया वर्तन कहताई, माटी स्यो माटर ले नागा उठ जाई। जाके किए श्रम करे ते बैर बरोधी, अंत कल्प जाहे गे काहे जल हो करोधी। दास रैन सोई हुआ जिस मत कर्म, कौ नान बंधन छुटे सतगुर की सरना। बिलावर महला पंजेवा, पिंगल पर्वत पार परे खल चतरु, चतरु बकीता अंदले तरपन सूजिया गुर भेट पनीता। मेहमा साधु संग दी सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोड अग हरे निर्मल पैचीता। रहाओ ऐसी पादु गोविंद की कीड़ास्ती जीता, जो जो किनो आपनो तिस अपय दान दीता। सिंह बलाई होए गयो तरण मेर दखीता, श्रम करते दम आड़को ते गणित नीता। कवन बंडाई कह सकू बे अंत गुनीता, कर कृपा मोहे नाम देहो नानक दरसरीता। बिलावल महला पंजवा, अहम बुद्ध परवाद नीत लोभ रसना साध। लापट कापट ग्रह बेदया मिथया विख्याद, ऐसी पेकी नित्र में पूरे गुर प्रसाद। राज मिर्क तन जो बना नामे बिन बाद, रहाउ रूप तुसो गंता का पुरपुगाद। मिलत संग पपिष्ट तन हुए दुर्गाद, फिरत फिरत मानुख भया खेन भंगन देहाद। ए अवसर ते चुकया भोजोन प्रमाद, प्राप कृपा ते गुरमिले हर हर बिस्माद। सुग सहज नानक आनंद ताके पूर्णाद। बिलावन महला पंज वाह, चरण पै संत बोहिता तरे सागर जीत। मार्ग पाए उद्यान में गुर दसे भेत, हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हित। ऊठ दबैठ सोते हर हर हर चेत, रहाओ पांचोर आगे पगे जब सा संगेत। पूंजी साबत कणो लाभ ग्रह सोभा सेत, नेचल आसन मिटी चिंत नाही डोलेत। भरम भुलावा मिट गया प्रपेक्त नेत, गुण गंभीर गुण नायका गुण कही है केत। नानक पाया साह संग हर अमृत, बिलावल महला पजवा बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी। मिलत संग सब भ्रमटे तत् पई हमारी, गत पई हमारी। मिलत संग सब भ्रमटे गत पई हमारी, जा दिन भेटे साध मोहे ऊहा दिन बलिहारी। तन मन अपनो जीरा फिर हो वारी, रहाउ ईश डाई मोहे ते इतनी दृढ़तारी। सगल रेन इहो मन पया बिनसी अवतारी, नींद चिंद पर दुख नाए खिन में जारी। दया मया अर निट पिक नाही दूर आरी, तनमा शीतल भय अमुक्ति संसारी। ही चीत पर सब प्राण धन नानक दरसारी। बिलावल महला पांचवा, टहल करो तेरे दास की पग झार हो बाल। मस्तक अपना भेट दियो गुण सुनो रसाल, तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दयाल। निस्वासर मन अंध होत चितवित कृपाल, रहाओ जगत उदान साध प्राव तिन लाग हो पाल। मोको दीजे दान प्राव संतन पगराल, उग स्याब काश नहीं नाही काश काल। भ्रम पै राखो मोह ते काटो जमजाल, बिना करो करुणा पते पिता प्रतपाल। गुण गावो तेरे साह संग नानक सुखसाल। बिलावल महला पांचवा, कीता लोड़ है सो कर है, तुझ बिन कछ नाहे प्रताप तुम्हारा। देख कै जमदूत छड़ जाहे, तुमरी कृपा ते छुटी है बिन से अहमेव। सर्व कला समरथ प्रा पूरे गुरुदेव, रहा खोज खोज खोजया नाम बिन कूर। जीवन सुख सब साह संग ब्रह्मन संपूर, जित जित लाव हो ते तित लग है। स्यानप जब स्यानप सब जाली, जात कत तुम पर पूर हो मेरे दीन दयाली। सब कुछ तुम ते मांगना वडभागी पाए, नानकी अरदास प्रभ जीवा गुण गाए। बिलावर महला पांचवा, साह संत कै वास बै करमल सब नसना। प्रभ सेती संग रातिया ताते गर्भ ना ग्रसना। नाम कहत गोविंद का सूची भई रसना, मानता निर्मल हुई है गुर का जप जप ना रहाउ। हर चात्रा पिया मन रस लै हसना, बुद्ध प्रकाश प्रगट भई ओल्ट कमल बिकसना।
ਸ਼ੀਤਲ ਸਾਂ ਸੰਤੋਖੈ ਸਵ ਪੂਜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੈਦਿਸ ਧਾਵਤ ਮਿਟ ਗਏ ਨਿਰਮਲ ਥਾਨ ਵਸਨਾ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ ਰਾਖਿਆ ਭਾਇ ਭਰਮ ਭਸਨਾ ਨਾਮਦਾਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖੀ ਭੇਖ ਸਾਹ ਦਰਸਨਾ ਬਿਲਾਵਨ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਪਾਣੀ ਪੱਕਾ ਪੀਸ ਦਾਸ ਕਹਿ ਤਬ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਸਿਗਧਾਰੀਆ ਅਗਨੀ ਮਹਿਜਾਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਸ਼ੋਹਰਾ ਤਿਸ ਚਰਣੀ ਲਾਗ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਛਤਰਪਤ ਤਿਨ ਛੋਡੋ ਤਿਆਗ ਰਹਾਉ ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਰੂਕਾ ਸੋ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਕਤ ਛਤੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਿਕੂ ਸਮਾਨ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਲੂਗਰਾ ਉੜ ਨਗਨ ਹੋਈ ਸਾਕਤ ਸਿਰ ਪਾਉ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪਹਿਰਤ ਪਦ ਕੋਈ ਸਾਗ ਸਿਉ ਮੁਖ ਜੋਰੀਏ ਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਂ ਟੁੱਟੈ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਏਤ ਉਤ ਹੈ ਛੂਟੈ ਸਭ ਕਿਛੁ ਤੋਂ ਮਹੀ ਤੇ ਹੋਵਾ ਆਪਣ ਬਣਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇੜ ਸਾਧਕਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਈ ਬਿਲਾਵਨ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸਰਬਨੇ ਸੁਣੋ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ ਠਾਕੁਰ ਜਸ ਗਾਵੋ ਸੰਤ ਚਰਨ ਕਰ ਸੀਸ ਧਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਨਿਧ ਸਿਧ ਪਾਵੋ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਰਿਣ ਕਾ ਲੈ ਮਾਥੇ ਲਾਵੋ ਰਹਾਓ ਨੀਚ ਤੇ ਨੀਚ ਅਤਿ ਨੀਚ ਹੋਏ ਕਰ ਬਿਨੋ ਬੁਲਾਵੋ ਪਾਪ ਮਲੋਭਾ ਆਪ ਤਿਆ ਸੰਤ ਸੰਗ ਸਮਾਵੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਅਨਕਤ ਹੈ ਨਾ ਧਾਵੋ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਭੇਟੀਏ ਮਾਨ ਮੋਹ ਮਿਟਾਵੋ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸੀ ਗਾਰ ਬਣਾਵੋ ਸਫਲ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵੋ ਬਿਲਾਵਨ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਅਟਲ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਜਨਾ ਸਭ ਮਹਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤੇ ਜਨ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਸ ਭੇਟੇ ਹਰ ਆਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਜਪ ਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਅਨਕ

गौर साबद चागर नबेरौ शांत बिलावल महला चौथा मंगल एक ओंकार सात गुरु प्रसाद मेरा हार प्रभु सेजै आया मन सुख समान राम गुरु टुठै हर प्रभु पाया रंग रलिया मान राम वडभागिया सुहागनी हर मस्तक मान राम हार प्रभ हर सुहाग है नानक मन पाना राम ने माणिया हर मान है हर प्रभ हर अपै राम गुरमुख आप गवाया नैत हर हर जपै राम मेरे हर प्रभ पावै सो करै हर रंग हर रापै राम जन नानक सहज मिलाया हर रस हर त्रापै राम मनस जन्म हर पाइय हर रावण वेरा राम गुरमुख मिल सुहागनी रंग होय कनेरा राम जन मानस जन्म न पाया तिन भाग मदेरा राम हर हर हर हर राख प्राभ नानक जन तेरा राम गौर हर प्रभ अगम दृढ़ाया मन तन रंग पीना राम भक्त पुछल हर नाम है गुरमुख हर लीना राम बिन हर नाम न जीव दे जो जल बिन मीना राम सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम बिलावल महला चौथा सलोक हर प्रभ सज्जन लोड़ लहो मन वसै वडभाग गुर पूरै वेखालिया नानक हर लै बलाग शांत मेरा हार प्रभ रावण आईया हूं मैं बिखचागे राम गुरमत आप मिटाया हर हर लिब लागे राम अंतर कमल प्रगासिया गुर ज्ञानी जागे राम जन नानक हर प्रभ पाया पूरै वडभागे राम हार प्रभ हर मन पाया हर नाम बधाई राम गुर पूरै हर प्रभ पाया हर हर लिब लाई राम अग्ञान अंधेरा कटिया जोट प्रगट आई राम जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम तन हर प्रभ प्यार रविया जा हर प्रभ पाई राम अखी प्रेम कसाई जो बैलक मसाई राम अखी प्रेम कसाईया जो बैलक मसाई राम गुरपूरै हर मेलिया हर रस आगाई राम जन नानक नाम विगसया हर हर लबलाई राम हम मूर्ख मुग्ध मिलाया हर कृपा धारी राम धन धन गुरु सावास है जन हुमै मारी राम जन वडभागिया वडभाग है हर हर उर तारी राम जन नानक नाम सलाहे तू नामे बलिहारी राम बिलावल महला पंजवा शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मंगल साज पया प्रभ अपना गाया राम मंगल साज पया प्रभ अपना गाया राम अविनाशी वर सुनया मन उपजया चाया राम मन प्रीत लागै वड़ा भागै मन प्रीत लागै वड़ा भागै काव मिलिया पूर्ण पते सहजे समाइया गोविंद गाय पाइया देह सखिये मोहे मते दन रैन ठांडी करो सेवा प्रभ कवन जुगती पाया बिनवंत नानक करो कृपा लै हो मोहे लड़लाया पया समाहड़ा हर रत्न बिसाहा राम खोजी खोज लदा हर संतन पाहा राम मिले संत प्यारे दया तारे कथै आकाथ बिचारो एक चैत एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारो कर जोड़ प्रभ पह कर बेनंती मिले हर जस लाहा बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ आगम अथाह साह अटल गणया पूर्ण संजोगो राम।

कह मुखो नह चतर सुगड़ सुजान बेती मोहि निर्गुण नहीं मोहि निर्गुण गुण नहीं नह रूप तूप न नैन बंके जय पावे तह रख तुही जय जय जय अंपह सगल जाको करना पत गत कहन लखो नानक पय अंपह सेव सेवक जो जान हो त्यो मोहे रखो मोहे मछली तुम नीर तुझ बिन क्यों सर मोहे चात्रिक तुम बूंद त्रैपतो मुख पर।

ज्योति ज्योत में लाए महला तीजा। बिलावल करे हो तुम प्यारे हो, एक स्यो लब लाए जन्म मरण दुख कटी है, सच्चे रह समाए सदा बिलावल आनंद है, जे चल है सतगुर पाए। सात संगति बह पाओ कर, सदा हर के गुण गाए, नानक से जन सोहने जे गुरमुख मेल मिलाए। पौड़ी सबना जिया बिच हर आप, सो भगता का मित हार, सब कोई हर कै बस भगता कै आनंद कर। हर भगता का मिली सर बत, सो निसल जन टंग तार, हर सबना का है खासम, सो भगत जान चित कर। तुद अपड़ कोई न सकै, साब चाख चाख पवै चढ़, सो लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंद है ते ब्रह्मना, जे चले सतगुर पाए, जनकै हृदय हर वसै हुमै रोग गवाए। गुण रव है गुण संग्रह है, ज्योति ज्योत मिलाए। इस जग में है बिरले ब्राह्मण, ब्रह्म बिंद है चित लाए। नानक जहन कौ नदर करे, हर सच्चा से नाम रहे, लिव लाए महला तीजा। सात गुर की सेवना कीती आ, शब्द न लगो पाओ, हमें रोग कमावन अत धीरग बहु सुआउ, मन हठ कर्म कमावने फिर जूनी पाए। गौरमुख जन्म

रहाओ। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावै, सो भाई सो मेरा वीर। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ खेले, सतगुर की मत धीर। जन नानक की हर आस पुजाव हो, हर दर्शन सांत शरीर। छक्का एक राग गोंड महला पंजवा, चौपदे कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सब करता सब भुगता, रहाओ सुनतो करता पेखत करता। अदृष्टो करता दृष्टो करता, उपत करता परलो करता, व्यापत करता अलिप्तो करता, बखतो करता बूझत करता, आवत करता जात भी करता, निर्गुण करता सरगुण करता। गुर प्रसाद नानक समदृष्टा, गोंड महला पंजवा। फाक्यो मीन कपक की न्याई, तू उर्ज रहे कुसुंभाए ले। पग धारह सास लेख तौ उदरहे, हर गुण गाए ले। मन समझ छोड़ आवाए ले, अपने रहन को ठौर ना पावे काए। पर कह जाए ले रहाओ, ज्यो मैगल इंद्री रस प्रेरियो। तू लाग प्रयो कुटुंबाए ले, ज्यो पंखी एकत्र होए फिर बिछरै। थिर संगत हर हर त्याए ले, जैसे मीन रसन साध बिनसियो। ओह मूठाओ मूड लो भाए ले, तू हुआ पंचवास वैरी कै, छूटह परसर नाए ले। ओहो किरपाल दीन दुख भंजन, सब तुमरे जंत सो सब तुमरे जी जंताए ले। पावो दान सदा दर्श पेखा, मिल नानक दास दसाए ले। राग गोंड महला पंजवा, चौपदे घर दूजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जी प्राण किए जन साज, माटी मह जोत रखी निवाज। बतन को सब किश भोजन पोगाए, सो प्रभ ताज मूड़े कत जाए। प्रभ पार ब्रह्म की लागो सेव, गुर तै सुजन निरंजन देव। रहाओ जिन किए रंग अनक प्रकार, ओपत परलो निमख मझार। जाकी गदमित कही न जाए, सो प्रभ मन मेरे सदा त्याए। आए न जावे निश्चल धनी, बेअंत गुणा ताके केतक गनी। लाल नाम जाके भरे भंडार, सगल घटा देवै आधार। सत पुरख जाको है नाओ, मिटह कोट अग्निमुख जस गाओ। बाल सिखाई भगतन को मीत, प्राण आधार नानक हित चीत। गोंड महला पंजवा, नाम संग कीनो व्यवहार। नामो इस मन का आधार, नामो ही चित कींद चित कीनी ओट। नाम जपत मिटह पाप कोट, रास दी हरे को नाम। मन का इष्ट गुर संग ध्यान, रहाओ नाम हमारे जी की रास। नामो संगी जत कत जात, नामो ही मन लागा मीठा। जल थल सब मह नामो डीठा, नामे दरगह मोख उजले। नामे सगले कोल उदरे, नाम हमारे कारज सीद। नाम संग इह मनुआ गीद, नामे ही हम निरपव भय। नामे आवन जावन रहे, गुर पूरे मेले गुणतास। कहो नानक सुख सहज निवास। गोंड महला पंजवा, निमाने कौ जो देते मान, सगल भुखे कौ करता दान। गर्भ घोर मह रखन हार, तिष्ठागुर कौ सदा नमस्कार। ऐसो प्रभ मन माहे त्याए, घट अव घट जत कदे सहाय। रहाओ रंक राव जाके एक समान, कीट हस्त सगल पुराण। बियो पूछना मसलत धरै, जो किश करै सो आपे करै। जा का यंत्र जान सकोए, आपे आप निरंजन सोए। आप अकार आप निरंकार, घट घट घट सब घट आधार। नाम रंग भगत भय लाल, जस करते संत सदा निहाल। नाम रंग जन रहे अगाए, नानक तिन जन लागै पाए। गोंड महला पंजवा, जाकै संग एह मन निर्मल। जाकै संग हर हर सिमरन, जाकै संग किल बिख होहे नास। जाकै संग हृदय प्रगास, से संतन हर के मेरे मीत। केवल नाम गाइय जाकै नीत, रहाओ जाकै मंत्र हर हर मन वसै। जाकै उपदेश परम भौ नसै, जाकै कीर्तन जाकै कीर्त निर्मल सार। जाकी रेन बाछै संसार, कोट पतत जाकै संग उधार। एक निरंकार जाकै नाम आधार, सर्ब जियां का जानै पेयो। कृपा निधान निरंजन देओ, पार ब्रह्म जब भय कृपाल। तब भेटे गुरसाध दयाल, दिन रैण नानक नाम त्याए। सुख सहज आनंद हर नाए, गोंड महला पंजवा।
ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾਨ, ਗੁਰ ਕੈ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਲੈ ਧਾਰਾਓ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰਾਓ, ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁਲੈ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਉਤਰਸ ਪਾਰ, ਰਹਾਓ ਭੂਲੇ ਕਾ ਗੁਰ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਹਰ ਭਗਤੀ ਲਾਇਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਬੇਅੰਤ ਵਡਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਰਦ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ, ਅੰਧਕਾਰ ਮਹਿ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੁਗਧ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਭੀ ਹੋਗ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਜਨਾਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈਐ ਭਾਈ, ਗੋਂਡ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਾ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟੈ ਦਾਤ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਰਹਾਓ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਲਾਗੈ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਭ੍ਰਮਤਾ ਕਾ ਭਾਗੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਏ ਮਾਨ, ਗੁਰ ਉਪਰ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ, ਗੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਪੂਰਨ ਘਾਲ, ਗੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਪੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ, ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਾ ਕਾ ਮਨ ਲਾਗ, ਗੋਂਡ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਭਗਵੰਤ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਦੇਵ ਅਲਖ ਅਭੇਓ, ਸਰਬ ਪੂਜ ਚਰਨ ਗੁਰ ਸੇਓ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਥਾਓ, ਅਨਦਿਨ ਜਪਾਓ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਨਾਓ, ਰਹਾਓ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ, ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨ ਰਹੋ ਕਰ ਜੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰ ਬੋਹਿਤ ਤਾਰੇ ਭਵ ਪਾਰ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜਮਤੇ ਛੁਟਕਾਰ, ਅੰਧਕਾਰ ਮਹਿ ਗੁਰਮੰਤਰ ਉਜਾਰਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਗ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਈਏ ਵਡਭਾਗੀ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦੁਖ ਨਾ ਲਾਗੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੋਏ।

रूप दीप सेवा गोपाल अनक बार बंदन करतार प्रभ की शरण गही सब त्याग गुर सो प्रसन्न भये वड भाग आठ पहर गाइए गोविंद तान धन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ हर गुण रमत भय आनंद पार ब्रह्म पूर्ण बखसंद कर कृपा जन सेवा लाए जन्म मरण दुख मेट मिलाए करम धर्म एहो तत् ज्ञान साध संग जपिए हर नाम सागर तर बोहित प्रभ चरण अंतर जामी प्रभ कारण करन राख लिए अपनी कृपा धार पंच दूत भागे बिकरार जुवै जन्म न कबहु हार नानक का अंग किया करतार गोंड महला पंजवा कर कृपा सुख अनद करे बालक राख लिये गुरदेव प्रभ कृपाल दयाल गोबिंद जिये जंत सगले बक्सिंद तेरी शरण प्रभ दीन दयाल पार ब्रह्म जब सदा निहाल रहाओ प्रभ दयाल दूसर कोई नाही घट घट अंतर सर्ब समाही अपने दास का हलत पलत सवार पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारा औखद कोट सिमर गोबिंद तंत मंत भजिय भगवंत रोग सोग मिटे प्रभ त्याए मन बांछित पूर्ण फल पाए करण कारण समरथ दयार सर्ब निधान महाबीचार नानक बख्श लिए प्रभ आप सदा सदा एको हर जाप गोंड महला पंजवा हर हर नाम जपो हर हर नाम जपो मेरे मीत निर्मल होए तुम्हारा चीत मन तन की सब मिटै बिलाए दुख अंधेरा सगला जाए हर गुण गावत तरिय संसार वडभागी पाइय पुरख अपार रहाओ जो जन करै कीर्तन गोपाल तिसको पोहि न सकै जम काल जग मह आया सो परवान गुरमुखे अपना खसम पछाण हर गुण गावै संत प्रसाद काम क्रोध मिटह उन्माद सदा हजूर जान भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंत हर धन खाट किए भंडार मिल सतगुर सब काज सवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गोंड महला पंजवा भाव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नहीं फिर मरण हर गुण रमत नाही जम पंथ महाबिचार पंच दूतह मंथ तौ शरणाई पूर्ण नाथ जी अपने कौ दीजह हाथ रहाओ सिमर शास्त्र वेद पुराण पार ब्रह्म का ग्रह वख्यान जोगी जति बैसनो रामदास मित नहीं ब्रह्म अविनाश

देवो कीरा हम खेल है सब लाल लुडाव है। तुम सदगुणी हीरा तुम पूर्ण पूरा संपूर्ण हम पे संग अगा ए मिलत मिलत मिलत मिल रहा नानक कह न जाए राम करी महला पंजवा। कर कर ताल पखावज पखावज ने नहो माते वजह रबाबा कर नहो मध बासुरी बाज है जेवा तुन अगाजा। नृत करे कर मनुआ नाच आने कुगर साजा राम को नृतकारी पेके पेकन हार दयाला जेता सा सी गारी रहा। अखार मंडली धरत सबाए उपर गगन चंदोवा पवन विचोला करत अकेला जल ते उपत होवा। पंच तात कर पुत्रा कीना किरत मिलावा होवा चांद सूरज दो जरे चिरागा चौकट पीतर राखे। दस पातो पंच संगीता एक पीतर साते भिन्न भिन्न हो भाव दिखाव है सब हो नरारी पाके। घर घर नित करे दिन राती घड़कड़ वाजे तूरा एक नचावे एक भवाव है एक आए जाए हुए तूरा। कहो नानक सो बोर ना नाचे जिस गुर भेटे पूरा राम करी महला पंजवा। ओंकार एक धुन एक है राग अलापै एक आदेसी एक दिखावे एक को रहा ब्यापै।

प्रहु पांच बचित्र करे संतोका सासुर आलै चाले बाजा मानतान तजताना पावन बीघा कालै फेरी फेर न होवे कब ही एक सबंध पालै नारदी नरहर जान हदूरे घूंगर खाड़क त्याग विसूरे सहज आनंद दिखावे भावे एहो नित करे जन्म न आवे जे को अपने ठाकुर भावे कूड़ माधे कीर्तन गावे साह संत की जावो टेक कहो नानक तिस कीर्तन एक राम कली महला पंजवा

तीर्थ कोई हज जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर निवाए, कोई पढ़े वेद, कोई कतेब, कोई ओढ़े नील, कोई सुपेद, कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बाशे भिस्त, कोई सुर गिंदू। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया।

और ओह कही न समावे। उन मोहे बहुते ब्रह्मांड, राम जनी कीनी खंड खंड, जो मांगे सो भूखा रह, इस संग राचै सो कछु न लह। इसे त्याग सा संगत कर आए बड़भागी नानक, ओ तरह राम कली महल पंजवा। आत्म राम सर्व मैं पेक, पूर्ण पूरया प्रभ एक, रत्न मोर दै मैं जान, अपनी वस्तुआ पछान। पी अमृत संतन प्रसाद, वड्डे पाग होवै तू पाई है, बिन जीवा का जाने स्वाद रहाओ। अड़दस वेद सुने कै डोरा, कोट प्रकाश न दिसे अंधेरा, पशु प्रीत घास संग रचै, जिस नहीं बुझावे सो कित विद बुझै। जानन हारया प्रभ जान, ओत पोत भक्त संगान, बिकस बिकस अपना प्रभ गाव है, नानक तिन जम नेड़ न आव है, राम कली महला पंजवा। दिन नाम कियो पवित, हर तन रास निरास ए बित, काटी बंद हर सिवाला, ए हर हर भक्त राम गुण गाए। बाजे अनहद बाजा, रसक रसक गुण गाव है, हर जन अपने गुरुदेव निवाजा रहाओ। आय बनियो पूर्वला भाग, जन्म जन्म का सोया जाग, गई गलान साध कै संग, मंता रातो हर कै रंग। राखे रख नहार दयाल, नाखी सेवा नाख शिकाल, कर कृपा प्रभ कीनी दया, बूट दुख मैं काढ लया। सुन सुन उपजो मन मैं चाओ, आड़ पैर हर के गुण गाओ, गावत गावत परम गत पाई, गुरप्रसाद नानक लि वलाई, राम कली महला पंजवा। कौडी बदले त्यागे रतन, छुड़ जाए ताहू का जतन, सो संचै जो होची बात, माया मोया टेडो जात। अभागे तै लाज नाही, सुख सागर पूर्ण परमेश्वर, हर ना चेत्यो मन माही रहो। अमृत कौड़ा कौरा बिखिया मिट्टी, सागत की विद नैन हो डीठी, कूड़ कपट अहंकार रिझाना, नाम सुन तो जान बिशियो डसाना। माया कारण सादी झूरे, मनमुख कब है ना उस्तुत कर, निरभ निरंकार दातार, तेस्यो प्रीतन करे गवार। सब सा

ते मछली का जाला टूटा। सुके काट हरे चलूल ऊंचे थाल फूले कमल अनूप अग्निवारी सतगुरु देव सेवका अपनी लायो सेव।

संत संजोगी नानक आग्रह प्रगटे प्रमीत नाद विनोद अनोद कोड नाद विनोद आनंद कोड प्रिय प्रीतम संग बने मन बांचत फल पाया हर नानक नाम भने शांत हिम कर रुत मन भावती माघ फगण गुणवंत जियो सखी सहेली गाओ मंगलो ग्रह आए हर कंत जियो ग्रह लाल आए मन त्याए सेज सुंदर सोईया वन त्रिन त्रे पवन भय हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इच पुन्नी मन जपया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करहो बिनवंत नानक नित करहो।

से सूरे से वीर, नानक तिन बलहार न हर जब उतरे तीर, उतरे तीर शांत चरण बिराजत सब ऊपर मिटिया सगल कलेश जियो, आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो, हर रंग राते सहज माते तिल न मन ते बीसर, तज आप सरणी परे चरणी सर्व गुण जगदीश्वर, बिन गोविंद गुण निध श्री रंग स्वामी, गोविंद गुण निध श्री रंग स्वामी, आदि का आदेश जियो, बिन वंत नानक माया धारो मया धारो जुग जुगो एक वेश जियो, राम कली महला पहला दखनी ओंकार एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ओंकार ब्रह्मा उत्पत ओंकार किया जन चित, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार वेद निर्मय, ओंकार शब्द उदरे, ओंकार गुरमुख तरे, ओ नम अखर सुनो बीचार, ओ नम अखर त्रिपवन सार, सुन पाडे क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ, सस्य सब जग सहज उपाया तीन पवन एक ज्योति, गुरमुख वास्त प्राप्त होवे चुन लय मानक मोती, समझय सूझय पढ़ पढ़ बूझय अंत निरंतर साचा, गुरमुख देख सात संभाले बिन साचे जग काचा, तदय धर्म तरे मापुर गुणकारी मन धीरा, तदै धूल पड़े मुख मस्तक कंचन पय मनूरा, धन तरनी तर आप अजोनी, तोल बोल सच पूरा करते कीमित करता जाने, कह जाने गुरसूरा, ज्ञान गवाया दूजा पाया, गर्भ गले बिख खाया, गुर रस गीत बात नहीं भावे सुनिया, गहर गंभीर गवाया, गुर सच कहिए गुर सच कहया, अमृत लहया मन धन साच सिखाया, आपे गुरमुख आपे देव आपे अमृत पी आया, एको एक कह सब कोई हो मैं गर्भ व्याप, अंतर बाहर एक पछाण यो कर महल सिंप, प्रभ नेड़ हर दूर प्रभ नेड़ हर दूर न जान हो, एक सृष्ट सबाई एक अंकार अवर नहीं दूजा, नानक एक समाई इस करते कहो क्यों गह राखो, फरियो तुलियो ना जाई, माया के देवाने प्राणी झूठ गौरी पाई, लभ लोभ मोहताज विगुते इब तब फिर पछताई, एक श्री वै ताक आत्म पावे आवन जान रहाई, एक अचार रंग एक रूप पावन पानी अग्नि असरूप, एक एको पवर पवै तिह लोए, एको बूझै सूझै पत होए, ज्ञान ध्यान ले समसर रह, गुरमुख एक विरला कोल है, जिसनों दे कृपा ते सुख पाए, गुरु द्वार आख सुनाए, ऊरम धूरम ज्योति उजाला तीन पवन मह गुर गोपाला, उगव्या असरूप दिखावै हर कर कर उगव्या असरूप दिखावै, कर कृपा अपने कर आवै, ऊनव बरसै निजर धारा, ऊतम शब्द सवार नहारा, जिस इस एके का जाने पेयो, आपे करता आपे देयो, उगवै सूर असुर संगार, उचो देख शब्द बिचार, ऊपर आदि अंत तेहो लोए, आपे करै कथै सुनै सोए, ओह विधाता मन तन दे, ओह विधाता मन मुख सोए, प्रभ जग जीवन अवर न कोए, नानक नाम रते पत होए, राजन राम रवै हितकार, रण महलो जय मनवा मार, रात दिनंत रह रंग राता, तीन पवन जग जारे जाता, जिन जाता सो तसी जेहा, अत निर्मायल सी जिस देहा, रहसी राम हृदय एक पाए, अंतर शब्द साच लिवलाए, रोस न की जय रोस न की जय, अमृत पी जय रह नहीं संसारे, राजे राय रंग नहीं रहना, आए जाए जग चारे, रहन कहन ते रह न कोई, किस पह करो बेनंती, एक शब्द राम नाम निरोधर गुरदेव पतमती, लाज मरंती मर गई, घूगट खोल चली, सास दवानी बावरी, सिरते संक टली, प्रेम बुलाई रली, स्यो मन मह शब्द आनंद, लाल रती लाली पई, गुरमुख पई न चिंद, लाहा नाम रतन जप सार, लाभ लव लोभ बुरा अहंकार, लाड़ी चाड़ी लायत बार, मन मुख आंदा मुक्त गवार, लाहे कारण आया जग, होए मजूर गया ठगाए ठग, होए मजूर गया ठगाए ठग, लाहा नाम पूजी वे साहो, नानक सच्ची पत सच्चा पात साहो, आए विगुता जग जम पंथ, आई ना मेटन गोसम रथ, आथ सैल नीच घर होए, आथ आथ देख निवै जिस दोए, आथ होए ता मुक्त सियाना, भगत बिहुना जग बौराना, सम वरतै गो सोए, जिसनो कृपा करे जिस प्रगट होए, जोग जोग थाप सदा निरवैर, जन्म मरण नहीं दंदा तैर, जो दिसै सो आपे आप, आप उपाय आपे घट थाप, आप अगोचर तंदै लोई, जोग जोगत जग जीवन सोई, करिया चार सच सुख होई, नाम होना मुक्त केव होई, बिन नावै वे रोध शरीर, क्यों ना मिले है, कट है मन पीर बाट।

जय गुर का कहया अंक समावै, निर्मल सूचो साचो पावै, निर्मल सूचे साचो पावै, गुर सागर रतनी नहीं तोट, लाल पदार्थ साच अखोट, लाल पदार्थ साच अखोट, गुर कहया साकार कमावै, गुर की करनी काहे तावै, नानक गुरमत साच समावै, टूटै नेहो के बोल है सही, टूटै बाहो दुहू देस गही, टूट प्रीत गई पर बुर बोल, टूट प्रीत गई बुर बोल, दुरमत पर हर ढाडी छाडी ढोल, टूटै गांठ पड़ै विचार, गुर सबदी कर कारज सार, लाहा साच न आवै तोटा, त्रे भवन ठाकुर प्रीतम मोटा, ठाको मनुआ राखो ठाए, ठैक मुई अवगन बचताए, ठाकुर एक सबाई नार, बहुते वेश करे कूड़े आर, पर कर जाती ठाकर हाई, महल बुलाई ठाक ना पाई, शब्द सवारी साज प्यारी, साई सुहागन ठाकुर धारी, डोलत डोलत डोलत डोलत हे सखी, फाटे चीर सीगार, डापण तन सुख नहीं बिन बिन, डापण तन सुख नहीं बिन डर बिन ठी डार।

देखा नहीं दूर, तिखाने वारी शब्द मन अमृत पिया भरपूर। देह देह आखे सब कोई, देह देह आखे सब कोई, जय पावै तै दे गुरु द्वारे देवसी, तिखाने वारे सोए टंडोलत टूटत हाउ फरी, टह टह पवन कबड़ा करार, पारे टहते टह पए हौले निकसे पार। अमर अजाची अमर अजाची हर मिले, तिनकै हौ बल जाओ, तिनकी धूड़िया कुली है, संगत मेल मिलाओ, मन दिया गुरु अपने पाया निर्मल नाओ, पाया निर्मल नाओ, जिन नाम दिया तिस सेव सा तिस बलिहार जाओ, जो उसारे सोटा हसी तिस बनी अवर न कोय, गुर प्रसादी तिस संभला।

ए मन में सबद आनंद दुर्जन ते साजन पे पेटे गुरु गोविंद बन बन फिरती टूटती बस्त रही कर बार सतगुर मेली मिल रही जन्म मरण दुख निवार नाना करत न छूटी है विण गुरु विण गुण जम पुर जाहे नाथ से एहो ना ओह है अवगुण फिर पछताहे नाथ से ज्ञान ना ध्यान है ना।

जिन बिछोड़ी से सो मेल सी गुर कहे ते अपार पाप पुरा पापी को प्यारा पाप लदे पापे पासारा पर हर पाप पछाणे आप नाथ से सोग बिजोग संताप नरक पड़ंतो क्यों रह क्यों बंचाय जम काल क्यों आवन जाना विसर झूठ बुरा कह काल मन जंजाली वेड़िया पी जंजाला माहे पिन्ना वह क्यों छूटी है पापे बचह बचाहे फिर फाही फासै कौआ फिर पछताना अब क्या हुआ फाथा चोग चुगै नहीं बूझे सतगुर मिलै ता आखी सूझे ज्यो मछली फाथी जम जाल बिन गुर दाते मुक्त ना पाल फिर आवै फिर जाए एक रंग रचै रह लिव लाए इव छूटै फिर फास ना पाए इव छूटै फिर फास ना पाए बीरा बीरा कर रही बीर पए बैराए बीर चले कर आपने बहन बिरह जल जाए बाबुल कह कर बेटड़ी बाली बल ने जय लोड़ है वरकामणी सतगुर से वहते बिरलो ज्ञान बूझना सतगुर साथ मिले ठाकुर हाथ बढ़ाई आ जाय पावे तै दे बाणी बिरला बिचार सी जे को गुरमुख होए हो माणी महापुरख की निज करवासा होए पन पन कड़िए कड़ कड़ पान पान कड़िए काड़े काड़े भजे ढाहे उसारे उसरे ढाहे सर पर सुख है सुख सर पर सुख है पी पर पुख है समरथ वे परवाह है परम पलाने पाए परम परम पलाने पाए दीवाने बिन भागा क्या पाई है गुरमुख ज्ञान डोरी प्र पकड़ी जिन खिंचे तन तिन जाई है हर गुण गाय सदा रंग राते बहुर न पछो ताई है पब्बे पल है गुरमुख बुझ है ता निज करवासा पाई है पब्बे पाव जल मार्ग विखड़ा आस निरासा तरी है गुर प्रसादी आपो चीन जीव त्या इव मरिय माया माया कर मुए माया किसै ना साथ हंस चले उठ डुम हंस चले उठ डुमनो माया भूली आथ मन जूठा जम जोहिया अवगण चल है नाल मन मह मन उल्टो मरै

गुण पी वस है नाल बिन सतगुर गुण ना जापनी जिचर शब्द ना करे विचार लस करिया कर समले आए वजह लिखाए कार कमा वह सिर तनी लाहा पल पाए लाभ लोभ बुरी आई।

जन सरिया आकार गुरमुख बेअंत ते आई है अंत न पारावार। राड़ा रूड़ा हर जियो सोई तिस बिने राजा अवर न कोई। लाड़ै गारड़ तुम सुनहो हर वसै मन माहे गुर प्रसादी हर पाई है मत को भरम भुलाहे। सो साहो साचा जिस हर तन रास गुरमुख पूरा तिसा बास। रूड़ी बाणी हर पे हर पाया गुर सबदी विचार। आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार। सोयना रूपा सुनची है तन काचा बिखछार। साहो संदा साहो सदाए संच धन दुबदा होए खुआर। सचियारी सत संचया साचो नाम अमोल। हर निर्मायल उजलो पत साची सच बोल। साजन मीत सुजान तू तू सरवर तू हंस। साचो ठाकुर मन वसै हो बलहारी तिस। माया ममता मोहनी जिन कीती सो जान। बिखिया अमृत एक है बूझे पुरख सुजान।

पाए, खर्च खरा तन ध्यान तू आपे, आपे वसै शरीर मन तन मुख, मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर, हम खपै खपाए सी बीजो वथ विकार, जंत अपाए विच पाए अनकर्ता अलग अपार, सृष्टि प्यो न जाने कोए, सृष्टा करे सोने चौ होए, संपै कौ ईसर त्याई, संपै कौ ईसर त्याई, संपै पुरब लिखे की पाई, संपै कारण चाकर चोर, संपै साथ न चाल होर, बिन साचे नाही दरगह मान, हर रस पी वह छुटे निदान, हिरत हिरत हे सखी होए रही हैरान, हाँ हाँ करती है मुई शब्द रवै मन ज्ञान, हार डोर कंकन कने कर था की सीकार, मिल प्रीतम सुख पाया सकल गुणा गलहार, नाने गुरमुख पाई है हर स्यो प्रीत प्यार, हर बिन किन सुख पाई पाया देखो मन बिचार, हर पढ़ना हर बुझना हर स्यो रखो प्यार, हर जपिया हर त्याईया हर का नाम आधार, लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार, आपे कारण जिन किया कर कृपा पग पगतार, करते हाथ वडियाईया बुझो गुर विचार, लिखिया फिर न सकी है जो पावे।